आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे. 3 decades of watching the world change.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
9: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
2: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
3: Across the country,
4: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Yeah. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
7: अरे मेरे राजा।

0: in 2 deaths and 4 injuries. The recurrence of such an incident raises serious questions about whether the norms are being followed or rules that are being flouted in this area, because remember, this is the very building that in fact crumbled down. There were no pillars, no beams, no support. Also, the report has suggested that safety checks should be conducted within a stipulated time frame for all PGs, private hostels and similar student accommodation located near colleges and universities in Delhi. Safety parameters such as building plan, construction quality, basement, land use, structural integrity, fire safety, exits and other legalities of the building should in fact be checked by the civic agencies. Now, this is not the first time that the incident like this has happened, is what the Supreme Court has underlined and has also stated that audit checks and safety checks needs to be done and within a limited time frame, is what the status report is in fact mentioning here. Over to you.
1: Anushka, as always, thank you so much for taking us through the latest developments and the revelations. We will, of course, revert to you for regular updates. To summarize what Anushka is saying, NDTV has now accessed an FIR copy against the building owner, his wife and his son. This FIR alleges that the owners were aware of the structural risk, but construction continued, allegedly driven by the lure of rental income. Police say the additional construction placed immense pressure on the building's load-bearing capacity, eventually leading to the collapse, and the case has been registered for culpable homicide and endangering the life of others. As Anushka is highlighting, you must note, Hari Ram, the owner, and his wife have been sent to 14-day judicial custody, while their son, Mahesh, has been remanded to 2-day police custody. This, as Delhi Municipal Corporation is in action mode. The building adjacent to the collapsed building has been demolished, while several other buildings nearby have been sealed in the area.
2: Our team and the rest of the agencies, NDRF, have all coordinated rescue operation. FIR रजिस्टर करी गई क्योंकि उसमें कुछ बच्चों की दुखद मृत्यु भी हुई है. उसमें 3 लोगों को अभी तक हमने अरेस्ट कर लिया है, जिसमें उर्मिला जो ओनर है इस पीजी की, जिनके नाम पे था ये, उनके हस्बैंड हरिराम गुप्ता जो है वो उनके नाम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था, और महेश जो है उनके बेटे जो उनके साथ इस पीजी को पूरा ऑपरेट करते थे. तो 24 घंटे ये ऑपरेशन पूरा चला है. उसमें 12 लोगों को रेस्क्यू करा गया, जिसमें से अभी 7 लोग की डेथ हो गई है.
3: जो बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में विद्यार्थी दिल्ली के विभिन्न कॉलेजेस में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हों, आई दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज हों, उनमें जो एक रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ का गैप है, उसको पूरा करने के लिए एफएआर में ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल छूट देना, एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स को रीडेवलप करने के लिए नए FAR में नई बढ़ोतरी के साथ उपलब्ध कराना, PG और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए जो जस्टिस गुआबा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो कमेटी की रिपोर्ट बन रही है, PGs को रेगुलेट करना, इन सब विषयों पर सब विभागों के साथ चर्चा हुई है. इसको इंप्लीमेंट करने का काम दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग करेंगे.
4: जैसे हम मुंबई में भी बारिश के पहले कौन सी इमारतें ढहने को आई हैं तो उनको नोटिस जारी करते हैं. अब ऐसे तो नहीं ना कि कोई भाई भूकंप हुआ और इमारत गिर ढह गई, तो ढह गई क्यों? अब 7 बच्चे मन जाने के बाद में मैं दिल्ली वालों को पूछता हूं, इन्होंने आपको क्या क्या जबान दी है, वचन दिए हैं? जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र में क्या क्या कहा है? है क्या दिल्ली वालों जी लोगों का जीवन सुरक्षित? एक बारिश आती है तो भय जाते हो.
1: Well, on that note, we're slipping into a very quick break, but as always, the news and updates continue right here on the NDTV network.

0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony.

नशीले पदार्थ, ड्रग्स, छिट्टा युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है और 7 तारीख को यानी कल हमारा भाई गुलजार सिंह दम तोड़ देता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जिसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाना चाहिए चलाया जाए और फिर उसके बाद हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो वीडियो आपने देखा, ये तस्वीर है हमारे भाई गुलजार सिंह की, और प्रमुखता से जो बात आई उसका हिंदी में अनुवाद है, मैं पढ़ देता हूं। पीड़ित पिता कहता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, कल चीमा हमारे यहां आया था, मैंने चीमा से सवाल किया था, ये चीमा भी जिम्मेदार है जो मेरी मौत का जिम्मेदार है, पंचायत का सरपंच भी मेरी मौत का जिम्मेदार है जी। पहला बिंदु, मंत्री जिसका कार्य होता है, मुख्यमंत्री भगवंत मान जिनका काम है ये ड्रग को रोके, पंजाब को ड्रग मुक्त प्रदेश करें, तो ये पापी आपकी सरकार अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और मंत्री हरपाल सिंह चीमा कह रहे पंजाब ड्रग युक्त रहेगा, नशा युक्त रहेगा। जैसे भगवंत मान नशे के पर्याय बन चुके हैं, हम हमेशा कहते हैं सूर्य अस्त भगवंत मान मस्त, और जो व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ना करे, जिसको आम जनता की चिंता ना हो, जो शाम को खुद नशा करे, वो पंजाब को नशा मुक्त क्या करेगा। आगे दूसरी बात, सवाल पूछता है व्यक्ति गुलजार सिंह से, पत्रकार, आपने उससे क्या सवाल किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नागरिक अपने हक का प्रयोग करके सवाल पूछता है मंत्री से। पीड़ित पिता कहता है, मैंने चिट्टे के बारे में सवाल किया था जी, ये वीडियो में है। तीसरा, आपने चिट्टे के बारे में क्यों पूछा, क्या आपके घर में कोई चिट्टा पीता है। पीड़ित पिता कहता है दर्द भरी आवाज में, हां जी मेरा बेटा पीता है। तीन प्रमुख बातें, और चौथी,
जब सवाल पूछता है पत्रकार, सरकार तो कहती है कि उन्होंने चिट्टा बंद करवा दिया है, तो पीड़ित पिता कहता है चिट्टा बिल्कुल बंद नहीं हुआ है जी,

माफी मांगू, ये मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है क्योंकि उसका बेटा चिट्ठा ले रहा है, उसको धमकाया जाता है कि मंत्री से माफी मांगो, तुमने हिम्मत कैसे दिखाई कि सवाल पूछो? विफलता किसकी है? भगवंत मान की है, मंत्री हरपाल सिंह चीमा की है और अरविंद केजरीवाल की है। दिल्ली में दारू का नशा, पंजाब में चिट्टे का नशा, यह कैसा नशा है सत्ता का? अरविंद केजरीवाल, दिल्ली को शराब दूंगा, पंजाब को चिट्ठा दूंगा, मेरा नाम है अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, और हम लोग देखते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं, अभी कुछ माह पहले एक मामला और आया था चिट्ठे से जुड़ा हुआ, नशे से। एक मां जिसके 5 बेटे थे, 4 बेटों की मौत हो गई नशा लेने के कारण। उसका 5वां बेटा अस्पताल में जाता है, पंजाब का ही। वो बेटा अस्पताल में होता है, मां विनती करती है भगवंत मान से, गुहार लगाती है, मेरे 5वें बेटे को बचा लो। बड़े दुख के साथ बता रहा हूं, वो 5वां बेटा भी अस्पताल में दम तोड़ देता है। उस मां के 5ों बेटे, उनकी मौत हो जाती है नशे के कारण। क्या भगवंत मान एक शब्द बोल पाए? क्या संवेदनशीलता दिखा पाए? क्या ये जो ड्रग्स का खुला व्यापार हो रहा है उनकी नाक के नीचे, जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं, क्या वो इस पे कोई सख्त कार्रवाई कर पाए? उत्तर है नहीं। तो हम यहां से मांग करते हैं, पहला, भगवंत मान जब रक्षक भक्षक बन जाए तो उसे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे बने रहने का कोई हक नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, तुरंत इस्तीफा दे भगवंत मान। दूसरा, क्योंकि हमारा भाई एससी समाज से आता था, क्या आपने ठोस कार्रवाई करी है? एससी एसटी एक्ट में भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बीएनएस धारा 108 में 10 साल की सजा है। क्या एफआईआर रजिस्टर हुई और उसमें यह धारा जोड़ी गई? एससी एसटी एक्ट का प्रावधान क्या उसमें है? तीसरा, क्या आपने अपने मंत्री हरपाल सिंह चीमा को बर्खास्त किया है? और यह मैं क्यों कहता हूं, ये जो वीडियो हमने देखा ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। इन लॉ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। जो व्यक्ति दम तोड़ रहा हो, वो जब खुद अपना वीडियो बना के किसी को जिम्मेदार बता रहा है, उसकी बहुत ही ज्यादा एविडेंट्री वैल्यू होती है। और अगर किसी मंत्री का नाम ले रहा है जो अभी भी मंत्री बना है, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? इसीलिए भगवंत मान जी को और मंत्री हरपाल सिंह चीमा को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारे भाई के परिवार की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। और इसी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक मां, 5 जिनके बच्चे थे, 5ों की मौत हुई ड्रग्स से, एक और भाई मोहनजीत सिंह शेरो, इन्होंने भी कुछ दिन पहले पटियाला में आवाज उठाई, ये जो ड्रग्स का व्यापार चल रहा है उसको लेकर। ये उनकी तस्वीर है मेरे हाथ में।

0: provide live visuals from Vadodara, where Prime Minister Narendra Modi is being greeted and welcomed by thousands of youth in Gujarat. A renewed push by the BJP and Prime Minister Narendra Modi to build a new rapport with the youth in Gujarat. And Akhilesh, our senior editor, is joining us on the broadcast to get us more details on this renewed push. Akhilesh, what more can you tell us about this particular visit to Vadodara and Navsari as well? Prime Minister being greeted to some very electric songs there among thousands of youth.
1: Yes, correct, Adit. In fact, in the past few days, we have seen that Prime Minister Narendra Modi has interacted with the students in the Bill Z on different, at least on high occasions, Prime Minister Narendra Modi has interacted with them. He is trying to communicate the message of the government that the government is with them and the government is listening to them very clearly. In this particular program, where you can see the pictures live coming from Vadodara, it's a very important event in the sense that the Prime Minister Narendra Modi is on a ramp, which is on a L-shaped ramp, and Prime Minister Narendra Modi is among the Gen Z. And for the booking on this particular program, it was done through Book My Show. And interestingly, it was free of cost, and 6,000 slots were allotted on Book My Show, and all of them were sold out in just 1 hour. Still, more than 40,000 people are waiting to get a chance to meet the Prime Minister Narendra Modi. So this shows the kind of support he has among the young generation. And in this program, what you've been told by the organizers that Prime Minister Narendra Modi will chalk out his plan for the developed country, developed India by 2047. So that is the theme as far as this interaction is concerned.
0: Well, Akhilesh, getting us the latest on these live visuals coming across from Vadodara, where Prime Minister has arrived at the Namo for Viksit Bharat event. Hundreds and thousands of youth have also lined up. And Akhilesh telling us about the new rapport that's been built in Gujarat with the youth, but across the country as well. Akhilesh, earlier in the day, we were also discussing about the rumors about the cabinet rejig. But there's also been a new social media strategy with the new IT chief of the BJP and the Prime Minister also taking a review with ministers of state on their social media rapport that's being built. Is there a new kind of a social media game that the BJP and the government is looking at ahead of some crucial elections?
1: Absolutely, absolutely, Adi. Because we have seen that Narendra Modi himself telling his cabinet colleagues in the cabinet meeting that they should be more active on different platforms like Instagram and Snapchat, etc. And in fact, the cabinet ministers were presented with the performance on their performance on the social media. In fact, a ranking was mentioned. The envelope was given to each minister in the cabinet meeting. What the sources are telling us that in the last night, there was a meeting with more than 20 Minister of State and MOF independent charge. And in that meeting, Prime Minister Narendra Modi detailed and discussed. This meeting lasted for more than 3 hours. And each minister's performance was discussed, especially in the social media. They were given the envelope. From social media platforms were mentioned. In fact, there was no ranking because what they believe that the performance was not up to the mark. So Prime Minister Narendra Modi told them very clearly that they have to, tighten their belts. They have to perform well as far as social media is concerned, because that is the media.
0: All right, Akhilesh, stay with us. These are live visuals of Prime Minister at the Namo for Viksit Bharat event in Vadodara. Saurabh Vakhtania is joining us live from Gujarat itself. Saurabh, what's planned for the day? Prime Minister has a hectic schedule in Vadodara as well as in Navsari, but a renewed push towards the youth, some very electric music, a lot of enthusiasm as Prime Minister builds this new rapport with the youth.
2: Well, definitely. Let me tell you that this is the first event of Prime Minister Narendra Modi where he is directly connecting with the Gen Z crowd over here. And it has to be made in a way that it looks Gen Z style only. That, first of all, let me tell you that this particular dome is made in a way that there's a live event which is going on. There is a Y-shaped stage which is made. Y-shaped, basically, there is a ramp which goes from starting of the stage to the end of the dome. There is 700 meters long ramp which has been made, on which Prime Minister Narendra Modi entered through this particular ramp. Usually you see that how Prime Minister Narendra Modi, from the backstage, he comes to the main stage. But here, what has happened over here, Prime Minister Narendra Modi from the front gate, he entered and he walked through the entire ramp and he met the Gen Z crowd over here. Not just that, while Prime Minister Narendra Modi entered this particular ground, there was a music from Dhurandhar movie which was played. Secondly, let me tell you that there is only 6,000 crowd, just Gen Z crowd, which is present over here. And they entered this venue only to Book My Show app. Let me tell you, then, when 2 days back, when this registration was opened, 6,000 people, the Densi crowd from MS University and other colleges in Vadodara, they only got an entry, and over 48,000 entries are still pending. So you can understand that how this particular event is right now, that 24 high definition cameras which are only used for live concert and IPL matches, but those cameras are used over here. And in that way, this is a very live organized event right now which is happening on Prime Minister Narendra Modi. It will be very important to see that what speech Prime Minister Narendra Modi gives over here.
0: All right, Saurav, Tania joining us live. Stay with us. These are live visuals. Ashwani Vaishnav, Union Minister for Information and Broadcasting, is speaking. Let's cut it.
3: Kendriya Mantri Savitri Ji Thakur, Gujarat aur Maharashtra ke Up Mukhyamantri gan, aur upasthit sabhi sansad, vidhayak, jo kahi stations pe, kahi jagah pe virtually hamare saath aaj jude hain, media ke saathi, aur sabhi naujawan yuva saathi, aap sabka bahut bahut swagat hai. साथियों आज दादरी से जेएनपीटी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर संपूर्ण हुआ और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे. फ्रेट कॉरिडोर की कल्पना हाईवे के स्वर्ण चतुर्भुज, श्रद्धेय अटल जी ने जब स्वर्ण चतुर्भुज बनाया था उसके साथ साथ की गई थी, लेकिन 2004 में जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार चली गई उसके बाद में कांग्रेस की सरकारों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया. 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी ली उससे पहले तक फ्रेट कॉरिडोर का एक किलोमीटर भी काम नहीं हुआ था. मोदी जी ने आने के बाद में एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया. फ्रेट कॉरिडोर की जितनी भी दिक्कतें थी, फंड्स की दिक्कत, डिज़ाइन की दिक्कत, लैंड एक्विजिशन की दिक्कत, उन सबको कंप्लीट किया, सॉल्व किया और उसके बाद में एक एक करके सेक्शन ओपन होने लगे. पहला सेक्शन 2020 में कंप्लीट हुआ, कोविड आया, कोविड की प्रॉब्लम्स आई, फिर काम स्पीड पकड़ा और एक एक करके कई सेक्शन कंप्लीट हुए. आज दादरी से जेएनपीटी तक कंप्लीट फ्रेट कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी. रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में और खासकर जो यंग जनरेशन आज जुड़ी हमसे, ये आपकी जनरेशन के लिए काम है. ये रेलवे का मॉडर्नाइजेशन में बहुत बड़ा माइलस्टोन है. सारे सिस्टम्स रेलवे के, चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रैक हो, चाहे ऊपर जो बिजली का तार होता है OHE या सिग्नलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सब को मॉडर्नाइज किया जा रहा है. 100 साल पुरानी संस्था है, 100 से ज़्यादा साल पुरानी संस्था है, एक एक करके सिस्टमेटिकली इसको मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है. और आपकी जनरेशन पहली जनरेशन है जिसने वंदे भारत में ट्रैवल किया है और अब तो वंदे भारत स्लीपर भी एक के बाद एक आने लगी है. अमृत भारत, नमो भारत और अब वंदे भारत की कार्गो ट्रेन्स भी बनने लगी है. 280 स्टेशंस का कंप्लीट रीडेवलपमेंट, नवनिर्माण कंप्लीट हुआ है. 36,000 किलोमीटर पटरियां नई बनी है दोस्तों, 36,000 किलोमीटर. और अब कवच भी इस्टेब्लिश हो गया है, सारी दुनिया उसको देख रही है. साथियों हमारी जनरेशन ने जब देखा था श्रद्धेय अटल जी का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्ण चतुर्भुज, उससे हाईवे का एक टोटली नया स्वरूप आया था. आज वैसा ही बदलाव रेलवे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं. जो रेलवे के 7 बड़े कॉरिडोर हैं, भारत का नक्शा दिमाग में लाइए आप, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए उसकी. दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, ये हुआ स्वर्ण चतुर्भुज. अब इसकी डायगनल्स, दिल्ली से चेन्नई, मुंबई से कोलकाता और उसके बाद में दिल्ली से गुवाहाटी, इन 7 कॉरिडोर्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 लाइनिंग कर रहे हैं, 4 लाइनिंग. और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, कई सारी नई गाड़ियां चालू कर पाएंगे. और जिस तेजी से नई गाड़ियां चलने लगी है, जिस तेजी से काम चल रहा है, साथियों जो आज कॉलेज में पढ़ने वाले युवा युवतियां हैं, आप जब कॉलेज से बाहर निकलोगे आप देखोगे रेलवे का एक टोटली नया स्वरूप आपके सामने है। कंप्लीट इस पूरे सेक्शन का, इस पूरे नेटवर्क का एक रूट है जो बड़ोदरा से रतलाम, आज इसकी फोर लाइनिंग का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से है। साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, रिजर्वेशन सिस्टम हो और पुराने मैनुअल्स, कंस्ट्रक्शन की व्यवस्था, इन सब को रिफॉर्म कर रहे हैं, इन सब को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। नई डिज़ाइन के वैगन बन रहे हैं, अभी आपने देखा होगा सॉल्ट के लिए एकदम स्पेशल डिज़ाइन माननीय प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन से बनी है। आने वाले समय में जो भारतीय रेलवे का आधुनिक स्वरूप सामने आ रहा है, इसका लाभ आने वाली कई जनरेशन्स को मिलने वाला है। चेनाब का ब्रिज, आप सबने देखा फोटो उसका या वीडियो, चेनाब का ब्रिज मिजोरम को रेलवे से जोड़ना, कई ऐसे पुराने प्रोजेक्ट थे वो अब कंप्लीट हुए। और अब बुलेट ट्रेन का इंतज़ार भी जल्दी ख़त्म होगा, काम तेज़ी से चल रहा है। सूरत से वापी सेक्शन का कंस्ट्रक्शन इसी साल दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, जो बुलेट भारत में बन रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से। उस ट्रेन का पहला बॉडी फ्रेम परसों बनकर स्क्वीज टेस्ट के लिए चला जा चुका है और अगले साल मई जून तक भारत में बनी हुई भारत की बुलेट ट्रेन पटरियों पे आएगी टेस्टिंग के लिए। दो तीन महीने के टेस्टिंग के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन होगा। और जब बुलेट ट्रेन में बैठोगे ना बड़ौदा के दोस्तों, यहाँ से मुंबई 1.5 घंटे में पहुँच जाओगे। कितने में, कितने में, क्या भाई सुन रहे हो, 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में बड़ोदरा से मुंबई। ये है आने वाले समय का रेलवे का आपके सामने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन और सशक्त नेतृत्व में आज देश और गुजरात के विकास को एक नई रफ्तार मिल रही है। आज गुजरात की पावन धरती वडोदरा से हमारे विकसित भारत के सपने को एक नई ताकत मिलने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज गुजरात और पूरे देश को देने जा रहे हैं 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की अभूतपूर्व विकास कार्यों की सौगात। इस विकास प्रवाह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भारतीय रेल। 30,700 करोड़ से अधिक की लागत से आज भारतीय रेल के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास एवं लोकार्पण हो रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आज राष्ट्र को समर्पित हो रहा है, जो देश के उद्योगों को बंदरगाहों से सीधे जोड़कर भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विशेष रूप से मालगाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, जिससे माल की तेज, सुगम और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। देश के प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को नई गति और नई क्षमता प्रदान करेगा। छोटा उदयपुर धार परियोजना के तहत जोबट टांडा रोड रेल खंड का उद्घाटन, जिससे आदिवासी क्षेत्र राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। साथ ही वडोदरा रतलाम मल्टी ट्रैकिंग, मियाँ गांव करजण चोरंदा मालसर लाइन और विश्वामित्री डभोई डबलिंग का शिलान्यास, और होने जा रहा है टांडा रोड वडोदरा ट्रेन सेवा के साथ 4 फ्रेट ट्रेनों का शुभारंभ। रफ्तार और सुविधा के इस सफर को नया विस्तार देगा नेशनल हाईवे नेटवर्क। 1780 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स के तहत NH 48 पर कामरेज चल्थान 6 लेन, तापी और नर्मदा नदी पर नए आधुनिक पुल, NH 53 के 3 जंक्शनों पर नए फ्लाईओवर का शिलान्यास हो रहा है। और आम नागरिक की ईज ऑफ लिविंग हेतु गुजरात सरकार वडोदरा महानगर पालिका और वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लेकर आई है 916 करोड़ से ज्यादा के जन सुविधा प्रोजेक्ट्स, 524 करोड़ के रिंग रोड फेज 2 और नए BMC भवन का शिलान्यास। बूढ़ा के 11 गांवों और आजवा भायली में शुद्ध पेयजल, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और 14,000 से अधिक परिवारों को उनके अपने पक्के घर की चाबी। सशक्त गुजरात के संकल्प को नई शक्ति देंगे ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के 580 करोड़ से अधिक के सोलर व ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, मार्ग एवं मकान विभाग के 390 करोड़ से ज्यादा के नए स्टेट हाईवेज व रिवर ब्रिजेस तथा पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक बस स्टेशन और उद्योग जल आपूर्ति के कई अन्य विकास कार्यों की शुरुआत हो रही है।

0: हमारे सेवावर्ती प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में आज वडोदरा से देश की ग्रोथ स्टोरी को मिल रही है एक नई स्पीड और नया स्केल। विकसित भारत 2047 के विजन को समर्पित ये मेगा प्रोजेक्ट्स भारत को एक सशक्त और ग्लोबल पावर हाउस बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। वंदे मातरम, जय हिंद।
1: अब मैं करबद्ध निवेदन करूंगी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल, राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं

अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि वे हरी झंडी दिखाकर टांडा रोड से वडोदरा के बीच नई यात्री ट्रेन एवं अन्य चार मालगाड़ियों का प्रस्थान कराएं।

महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का ये मैदान अलग अलग फील्ड में काम करने वाले सभी साथियों का साथ और विकास का ये उत्सव, यहां सब कुछ एक साथ हो रहा है। साथियों, आज मैं विकसित भारत की यात्रा को और गति देने के लिए आपके बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले यहां देश के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस विकास पर्व पर आप सभी ने जिस सेवा भाव से और सेवा भाव के साथ पूरे वडोदरा शहर में स्वच्छता से स्वागत अभियान चलाया है, इसके लिए मैं वडोदरा के हर एक नागरिक को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। और ये जो आपने रंग दिखाया ना, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, सीना चौड़ा हो गया। वाह, क्या मेरा वडोदरा। और अब तो गणेशोत्सव की तैयारी, बाद में नवरात्रि और गणेशोत्सव और नवरात्रि, पूरा गुजरात का ध्यान वडोदरा पर होता है। और आज आपने, मैं देख रहा था पिछले एक सप्ताह से हर परिवार में वातावरण बन गया स्वच्छता का। मुझे लगता है कि इस बार जब गणेश जी पधारेंगे ना, सारे आशीर्वाद वडोदरा पर बरसने वाले हैं। साथियों, इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। विकसित भारत के लिए हमें ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए जो सुगम भी हो और जमाने के हिसाब से जरा तेज भी हो। वडोदरा तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी का शहर है। आज यहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आखिरी कड़ियां भी जुड़ गई हैं। आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है। इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

पर 2004 में विचार शुरू हुआ था, यानी यहां मैं सारे नौजवान देख रहा हूं, जब इसका विचार शुरू हुआ

दी रही, पायलट टेबल पे यात्रा कर रही थी। और दुर्भाग्य देखिए, इन फाइलों को भी कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर नसीब नहीं हुआ, फाइल को भी नहीं नसीब हुआ। फाइलें अटकती थी, लटकती थी, भटकती थी। और 2014 में वडोदरा के और गुजरात के और देश के लोगों ने मुझे गुजरात से निकाल करके दिल्ली भेज दिया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई। और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था। अगर उनके हिसाब से देश चलाते तो पता नहीं आपके बाद 3-4 पीढ़ियां आती तो भी नहीं होता। भारत के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाले प्रोजेक्ट की ये हालत करके रखी थी। साथियों, 2014 के बाद आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी, इस धरती ने मुझे जो सिखाया था, आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया। और आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। पहले पैसेंजर ट्रेन जिस ट्रैक पर चलती थी, उसी ट्रैक पर मालगाड़ी भी चलती थी। यानी ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट दोनों धीमा था, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने इस स्थिति को बदल दिया है। आज पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर्स पर हर रोज 430 से ज्यादा मालगाड़ियां चलती हैं। प्रतिदिन 430 मालगाड़ी। और पहले जो मालगाड़ी 6.5 घंटे में 100 किलोमीटर का सफर तय करती थी, और अब वही मालगाड़ी आधे से भी कम समय में 100 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी। जिस जगह पर ट्रक से सामान भेजने में सामान्य तौर पर 30 घंटे लगते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर यही दूरी 10-12 घंटे में पूरी हो जाती है। यानी इस कॉरिडोर पर मालगाड़ी के चलने से ट्रक और ट्रेन में लगने वाला फ्यूल बचता है, किराया भाड़ा का खर्च कम हुआ है,

समय बचा है, पर्यावरण को फायदा हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट एक ट्रैक पर किया और फायदे अनेक सारे हुए हैं। साथियों, इस फ्रेट कॉरिडोर से पूर्वी और पश्चिमी भारत के किसानों की उपज अब तेजी से बड़े बाजार तक पहुंच पा रही है। कई तरह के फूल, कई तरह की सब्जियां, कई तरह के फल, यानी जो चीजें मौसम के हिसाब से जल्दी खराब होती हैं, उनके लिए भी सही समय पर मंडियों और लोगों के बीच पहुंचने का रास्ता बना है। इससे किसान का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर एक और वजह से कमाल का है। हाल ही में जेएनपीटी मुंबई, जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है। यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया, यानी अब बड़ी मात्रा में सामान तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच पाएगा। साथियों, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यहां जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वे भी इस प्रोजेक्ट के द्वारा रेल से जुड़ रहे हैं। पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है। आज भी इस कार्यक्रम में कई नई ट्रेन शुरू हुई है। नई ट्रेन से वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर के लोगों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, रोड, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन, गरीबों का घर, जब देश में करोड़ों लोगों के लिए चीजें बनती हैं तो इससे लोगों का जीवन आसान होता है और साथ ही छोटे से बड़े कामगार को रोजगार के लाखों लाख अवसर मिलते हैं। अब रेलवे का ही देखिए, इस वर्ष का रेल बजट 3.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। ये 12 वर्ष पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। यानी रेलवे के आधुनिकीकरण पर हो रहा खर्च
हजारों हजार नए रोजगार बना रहा है और ये रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान तो बनता ही है। एक बार रोड, रेल, पाइपलाइन, पोर्ट, एयरपोर्ट बन गया तो फिर उसके आसपास नए उद्योग लगना शुरू हो जाते हैं, नए बिजनेस आते हैं, ये फिर नए रोजगार बनाते हैं। वहां कुछ लोग, वो बेटी चित्र लेके कब से खड़ी है, वो सज्जन भी कुछ कला लेकर के आए हैं, जरा हमारे साथी उसको कलेक्ट कर लें। ये आगे पहुंचा दीजिए। हाँ, एक और भी है कोई? हाँ, ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैंने देश के सामने विकसित भारत की जिन सप्त धाराओं का विजन रखा है, उनमें एक धारा मैन्युफैक्चरिंग की भी है और वडोदरा शहर इसकी ताकत अच्छे से जानता भी है, समझता भी है। एजुकेशन, स्किल और इंडस्ट्री का कॉलेब कैसे होता है, ये वडोदरा करीब 150 साल से इसका प्रतिबिंब है। दशकों पहले यहां टेक्सटाइल और टाइल्स के निर्माण से एक यात्रा शुरू हुई थी जो बाद में ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स के साथ आगे बढ़ी। पिछले 2.5 दशक में वडोदरा एमएसएमई का एक बड़ा हब बन गया है। और मुझे याद है, जब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था तो वडोदरा का मेरे पर स्पेशल अधिकार रहा है हमेशा, तो हर हफ्ते कोई न कोई डेलीगेशन आता था, बस हमारे वडोदरा में कुछ मैन्युफैक्चरिंग का हो, क्योंकि यहाँ पर आते थे तो या तो ज्योति या एलएमबीक या तो जीएसएफसी, यही सब दिखता था और कुछ सुनता नहीं देता। आज कहाँ से कहाँ बदल गया, अब तो ये शहर देश के पहले मेड इन इंडिया मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी जाना जा रहा है। C-295 एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट यहां आसमान देख चुकी है। मैं वडोदरा के लोगों को ये गौरव पाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब देश की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो मैं एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बीते एक दशक में भारत रेल कोच, मेट्रो कोच बनाने का, रेल इंजन बनाने का भी एक बड़ा निर्माता बना है। 2014 के बाद से अब तक भारत ने करीब 50,000, ये आंकड़ा सुन लिए, 2014 के बाद भारत ने अब तक 50,000 आधुनिक रेल कोच बनाए हैं। पुरानी सरकार 10 साल में 50,000 टॉयलेट नहीं बना सकती थी। पचास हजार आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं,
भारतीय रेल में जोड़े गए हैं 2.5 लाख। साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा, आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं, जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए और आज हम इसमें 200 गीगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी विकसित कर चुके हैं। और ऐसी ही आत्मनिर्भरता के कारण आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार हो रहा है। अब तक देश में 55 लाख परिवार अपने छत पर, टेरेस पर सोलर प्लांट लगा चुके हैं और इसमें 11 लाख परिवार हमारे गुजरात के हैं। यहां इतने सारे परिवार बिजली उत्पादक बन चुके हैं और इसके कारण प्रोडक्शन से लेकर इंस्टॉलेशन और सर्विस तक कितने ही युवाओं को रोजगार मिला है, कितने नए वेंडर्स आए हैं। साथियों, झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है।

0: ਪਿੰਡ ਚ ਸਰਿਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਖਰਿਆਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਭੜਕ ਗਏ ਜੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੇ ਟੀਮੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ।
1: ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾ ਸਕੀਏ।
2: ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬੁੱਧ ਕਰਾਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੜਕਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਆਪ ਪਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਫਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਫਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ।
3: ਯਾਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ
4: Hello and welcome back. You're watching NDTV because when it really matters, it's NDTV. Now, NDTV has accessed FIR copy against the building owner, his wife and his son. The FIR alleges that the owners were aware of the structural risk, but the construction continued. This is the horrific story that's coming in from Delhi's Satya Niketan. In fact, what we have been tracking here on NDTV is how, in fact, he continued, allegedly driven by the lure of the rental income, to construct and have used this as a hostel. Police say that the additional construction placed immense pressure on the building's load-bearing capacity, eventually leading to the collapse. Case has now been registered for culpable homicide and endangering the life of others. Owner Hariram and his wife have been sent to 14-day judicial custody. Son Mahesh has been remanded to 2-day police custody as well. Meanwhile, the Delhi Chief Minister Rekha Gupta met the injured at the AIIMS Hospital in New Delhi. She also met parents and assured them of all support and assistance. He also gave 5 lakh checks to each injured. Let's listen in to Delhi Chief Minister Rekha Gupta and other reactions that we are picking up.
5: घायल बच्चों से मिली हूँ, अभी जैसे 12 लोग इंजर्ड स्थिति में वहां से निकले थे, उसमें से 7 लोग डेड पाए गए थे, उस 7 में से 2 लेबर थे। एक लेबर यहाँ एडमिट है जो कि अभी वर्तमान में ठीक है, उसके पैर में काफी चोट है जिसका इलाज चल रहा है, और उसके अलावा जो 5 स्टूडेंट थे तो उस 5 स्टूडेंट में मतलब हमारे अभी यहाँ पे जो एडमिट हैं 2 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और आज डिस्चार्ज हो जाएंगे। एक बच्चा आईसीयू में है जिस थोड़ा सा उसको तकलीफ ज़्यादा है, उसका इलाज वहाँ चल रहा है। पेरेंट्स से भी मैं मिली हूँ और सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज जो है पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी। बिल्डिंग डेंजरस है, उसे डेंजरस घोषित कर दिया गया है, उस बिल्डिंग को गिराया जाएगा और कल की डेट में वो बिल्डिंग गिरेगी।
6: लेकिन मजदूर
7: हमारी टीम और बाकी सारी एजेंसीज NDRF सब ने कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसमें FIR रजिस्टर करी गई क्योंकि उसमें कुछ बच्चों की दुखद मृत्यु भी हुई है। उसमें 3 लोगों को अभी तक हमने अरेस्ट कर लिया है, जिसमें उर्मिला जो ओनर है इस PG की जिनके नाम पे था ये, उनके हस्बैंड हरिराम गुप्ता जो है वो उनके नाम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था, और महेश जो है उनके बेटे जो उनके साथ इस PG को पूरा ऑपरेट करते थे। तो 24 घंटे ये ऑपरेशन पूरा चला है, उसमें 12 लोगों को रेस्क्यू करा गया जिसमें से अभी 7 लोग की डेथ हो गई है।
8: जो बड़ी तादाद में लाखों की तादाद में विद्यार्थी दिल्ली के विभिन्न कॉलेजेस में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हों, आई दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज हों, उनमें जो एक रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ का गैप है उसको पूरा करने के लिए FAR में ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल छूट देना, एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स को रीडेवलप करने के लिए नए FAR में नई बढ़ोतरी के साथ उपलब्ध कराना, PG और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए जो जस्टिस गुआबा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो कमेटी की रिपोर्ट बन रही है, PGs को रेगुलेट करना, इन सब विषयों पर सब विभागों के साथ चर्चा हुई है। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग करेंगे।
4: These were government reactions coming in, and now the harrowing account of two young students who were inside the neighboring PG when the building came crashing down. They say cracks had already been appearing on their walls, but moments before the collapse, the situation turned terrifying. They rushed to escape as debris blocked their exit, leaving their belongings behind. Watch this exclusive ground report by Tejshree with the eyewitnesses.
6: Well, I am being joined by those girls who stay in the building, which could collapse at any given point of time. Notice has been served to that building. और ये ऐसी इमारत है जो कभी भी ढह सकती है, और इसी को लेकर फिलहाल आप देख सकते हैं कि गार्ड रेल्स भी लगाए गए और सुबह से हम इस इमारत की तस्वीर दिखा रहे हैं। खाली करा दी गई है पूरी बिल्डिंग। इन बच्चियों से बात करते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन स्टेइंग, कब से रह रहे थे आप यहाँ?
9: आई वॉज स्टेइंग सिंस पास्ट वन मंथ।
6: एक महीने से रह रहे थे। अच्छा, तो अंदर की कंडीशन ठीक थी बिल्डिंग?
9: यस, माई रूम वॉज एब्सोल्युटली फाइन, एंड मेरे रूम में वेंटिलेशन नहीं था, देर वॉज नो विंडो। इवन दैट द ओपन थिंग दैट यू सी, वो बिल्डिंग के गिरने के बाद बनी है, वो मेरे सामने क्रम्बल डाउन हुई है।
6: जब आप मतलब व्हेन द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, वेयर वर यू?
9: आई वाज इन द रूम।
6: यू वर इन योर रूम? इन दैट रूम?
9: इन दैट रूम।
6: सो वेयर इज, कैन यू जस्ट लोकेट वेयर योर रूम इज? बताइए कृष्णा जी उस तरफ कैमरा करके।
9: दैट्स माई रूम, दैट ओपन थिंग दैट यू सी द बॉक्स, दैट्स माई रूम।
6: द विंडो व्हिच वी कैन सी फ्रॉम योर राइट नाउ, दैट इज योर रूम?
9: यस।
6: एंड द moment the building collapsed, you were very much present there?
9: Yes.
6: What all?
9: So she is my roommate, Arnita. We both were in the room.
10: And I was making a video, and I was literally saying on that video that ये building तो गिरने वाली है, like this wall गिरने वाली है। वहाँ पर cracks में से cement गिर रहा था, पानी आ रहा था, and then suddenly वो ज़्यादा आने लगा, वो एकदम अचानक से आ गया, और the next moment वो वाल पूरी गिर गई। पहले वो बिल्डिंग हमसे डिटैच हुई तो हमारा वाल गिरा, एंड देन हमने देखा वो बिल्डिंग ऐसे गिरते हुए, एंड वी आर सो शॉक्ड। हम बस किसी तरह जान बचा के भाग के आए, एंड वी वर द फर्स्ट पीपल जो पीजी से निकल के आए थे।
6: मतलब यू आर सेइंग दैट यू हैव योरसेल्फ सीन द बिल्डिंग कोलैप्सिंग?
9: वी सॉ दैट बिल्डिंग कोलैप्स।
10: 10 meters के डिस्टेंस पे थे हम।
9: हम पिछले दो दिनों से सो भी नहीं पाए हैं, हमें सपने में भी वो बिल्डिंग गिरते हुए दिखती है, हमें सपने में उन लड़कों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, दे आर टेलिंग अस सेव अस सेव अस, बिकॉज वो बिल्डिंग तो हमारे सामने गिरी, बिकॉज दैट होल दैट यू सी, वो होल जब बना तो वी कुड सी देम, वी कुड सी द बिल्डिंग कोलैप्स।
4: Well, some very, very tense moments out there. Those were eyewitnesses exclusively speaking on NDTV about the Satya Niketan disaster. Now, we take you inside the narrow lanes of Satya Niketan where the building collapse took place. NDTV's managing editor, Padmaja Joshi, brings you the voices of students, a closer look at the cramped PG spaces and the stark reality of the life behind these walls, where dreams often come at a steep cost.
11: This is what looks like one of the better maintained paying guest accommodations, but the staircase remains as narrow, and here you see on every floor you will have a room. Most of these houses are being shared, and I just want you to again focus. This is the breadth of the staircase, and this is the solitary staircase that you have in this building. So either, if you can, then you try and jump from a balcony if you have access to it. Otherwise, this is pretty much it. And let's go up. So, and then if you're living on the fourth floor, there is no lift, so you have to walk all the way up or run all the way down, depending on what it is that you are doing. So here's a look at another such paying guest accommodation. One of the better ones, at least, has an access to a terrace and an independent washroom. This is on the fourth floor, and you have a slightly larger, a double bed, which is available, along with a fridge and a wardrobe. And this is the attached terrace, along with a small washing area. But again, even from here, you don't see any independent escape. From here, if you need to get out, you will have to go down that same staircase that I came up from. The lady who runs this paying guest accommodation is also here with us. मैम आपका यहाँ पे कितने साल से आप चला रहे हैं
12: ये
11: अकाउंट?
12: मैम ये हो गया लास्ट 8 to 9 years.
11: एंड हाउ मच डज वन पे फॉर अ अकोमोडेशन लाइक दिस?
12: 10,000 per bed.
11: 10,000 per bed. बट इन वन रूम लाइक अ डबल बेड लाइक दिस यू हैव टू पे 20,000?
12: नो, या 20,000, क्योंकि पीजीज में रहते हैं, इनके फ्रेंड्स भी हैं, ये भी हैं, सब हैं, तो ये लोग गए हैं, इन्होंने देखा है.
11: और यहाँ पर कभी कोई इंस्पेक्शन होता है कि कोई फायर सेफ्टी का इंस्पेक्शन to put up fire extinguishers, to check the fire escape?
12: नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ.
11: कोई एम सी डी का कोई यहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं होता? कोई एन ओ सी के लिए बात हुई हो?
12: नहीं.
11: सो इट्स अ टफ लाइफ. लाइक आई सेड, दिस इज़ वन ऑफ द बेटर रूम्स, बट अगेन दिस वन रूम, दिस वन बेडरूम दैट वन पेज अबाउट 20,000 फॉर, आई कैन प्रिटी मच कवर द एंटायर लेंथ ऑफ द रूम इन अबाउट 10 steps. And that is how these kids who are coming from Punjab, who are coming from Bihar, from Uttar Pradesh, this is where they spend pretty much 3 years of their life. When it comes to checking for NOCs, checking for fire safety, like you just heard the lady, no inspection, no checks.
4: Now that was a ground report by my colleague Padmaja Joshi. Now Satya Niketan is a neighborhood that's home to hundreds of Delhi University students, mainly from the South Campus. The death toll stands at 7, with rescue teams still digging through the rubble in search of the survivors. Locals say this building had been tilting for months together, yet the repair work continued regardless. In this special report, we reconstruct exactly how and why Satya Niketan came crashing down. That's my colleague Vishnu Som getting you the details.
13: This is Satya Niketan in Southwest Delhi, home to hundreds of Delhi University South Campus students. It was here on Sunday afternoon that an ordinary day turned to tragedy. Just behind me is a building that housed nearly 75 students. Around 1:30 in the afternoon, it came crashing down without warning. Let me take you closer to that site. A few hundred meters from where students queue up every day, an entire building turned to rubble in seconds, trapping dozens beneath it. Well, this is the building in question right behind me. 50 years old, multiple stories, packed with paying guest rooms. What most residents didn't know, this structure had already started tilting months before it fell. So let's go inside, right down to where investigators say it may have begun. We're going to go down right to the basement. Even as the building leaned dangerously, repair work continued. You can actually see it all happening right next to me. Repair work in a place where work like this should never, in fact, have been taking place at all, is what residents say should never have happened in the first place. Well, this is where it all started, this weak pillar which started giving way. The failure at the base travels upwards in seconds. Floor after floor loses its footing, and what took decades to build comes down in moments. And this is where it all started coming down, completely collapsing upon itself. Panic, screams, a cloud of dust swallowing the streets. Students and residents ran for safety as rescue teams raced to reach those still trapped. This is Satya Niketan before and after. A neighborhood changed forever by a few seconds that no one saw coming.
4: Now, NDTV has been tracking the Satya Niketan disaster in Delhi from all possible angles. We've been investigating it and raising the right questions. The alleged owner, Hariram, his wife and son, have been arrested and have been sent to judicial custody. Their links to the property is now under the scrutiny. Watch this exclusive NDTV report giving you all the details and raising some significant questions.
14: It's a tragedy that has sent shockwaves across the national capital. Young lives brimming with aspirations snuffed out in seconds. The investigation into the Satya Niketan building collapse has now turned the spotlight on the alleged property owner, Hariram Bansal. After hours of frantic search, Bansal was apprehended from Bhiwadi in Rajasthan, which is about 40 to 50 kilometers from Gurugram. The owner was nabbed after a lookout notice was issued against him. Besides Hariram Bansal, his wife Urmila and son Mahesh Bansal have also been arrested. The land was registered in the name of wife, while electricity connection was registered in the name of Hariram and his son Mahesh. The investigation reveals more about the ownership trail. Property documents are in the name of Hariram Bansal, but police sources say that his brother Anand Bansal, who lived close to the collapsed structure, was looking after the property. Anand was also running a shop in the area. But Delhi property isn't the only property owned by Hariram Bansal. He owns a swanky bungalow in Gurugram, a hardware shop in Sector 23, and multiple other properties, reportedly including a PG facility in Gurugram as well. Cops are also probing whether he owns other properties in Delhi.
15: यह बंसल जी की शॉप जो है मार्केट में है
16: जी,
15: तो उनसे जो है हमारा रिलेशनशिप यही है कि भी कभी उनकी दुकान से सामान लेने हम लोग जाते हैं, तो व्यक्तित्व तो उनका ठीक ठाक है
16: जी। कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पे?
15: कई सालों से यहाँ रहते हैं
16: जी।
15: और इनके और भी कई मकान है, इनकी बेटी का, इनके बेटे का, सभी आस पास सेक्टर 23 में रहते
16: हैं। और क्या बिजनेस करते हैं अंकल?
15: उनका हार्डवेयर की शॉप है जी, हार्डवेयर का काम।
16: अच्छा, और दिल्ली में?
15: दिल्ली का मुझे आइडिया नहीं है, दिल्ली का मुझे कोई आइडिया नहीं कि इनका कोई शांति नहीं कि ऐसा कोई मकान है, लेकिन यहाँ इनकी चार पांच प्रॉपर्टी हैं।
17: देखिए कितना दूर है आउटगेट, यानी कि ये कोने का मकान।
14: NDTV team was the first to reach accused's Gurugram residence but found it locked from inside.
17: NDTV की टीम सबसे पहले पहुंची है आरोपी हरिराम बंसल के घर, गुरुग्राम के सेक्टर 23 में। ये पॉश इलाके में ये घर है आरोपी हरिराम बंसल का, और घर का नंबर है 271F, ये घर का नंबर है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी और NDTV की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई है। ये घर के बाहर घंटी लगी हुई है, घंटी बजाने पर अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर कुछ लोग हैं लेकिन वो ना तो दरवाज़ा खोल रहे हैं और ना ही बाहर आ रहे हैं।
14: With Hariram Bansal now in custody, police are piecing together the ownership, occupancy and construction trail. The big question, who was responsible for multiple safety norms violations? Bureau Report, NDTV.
4: On NDTV, we will be continuously raising questions and accountability and, of course, transparency on this horrific disaster. But on Breaking Ground, we are heading for a short break. When we return, news and updates will continue.

0: drive in the Kia Sorento.
1: Kia. Movement that inspires.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
4: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज, ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट। ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड। Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't.

0: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है, यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई, और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था।
1: All right, let's shift focus now to West Bengal, where politics has erupted and controversy has erupted over veg and non-veg food during Durga Puja. Remember, this is always a touchy topic, but this time this controversy has now erupted after Dhirendra Shastri, also known as Baba Bageshwar, called for meat and liquor shops to be shut during Durga Puja, urging the West Bengal government to convey his message. Now, this has created a huge furor. The Congress has filed police complaint against Bageshwar Baba over his comments on Durga Puja. Demand has also triggered a political pushback. BJP chief himself, West Bengal BJP chief Samik Bhattacharya, distanced the party from this year's remarks, saying the food choices are a personal matter and cannot be decided by any Baba. The Trinamool Congress too has hit out, questioning whether an outsider can decide what people in Bengal should eat. Congress took a dig, saying the BJP and RSS cannot control people's food choices. Take a look at those comments.
2: कौन कौन चाहता कि नॉन वेज बंद हो? पक्का अपने अपने मोबाइल की लाइट जलाओ ताकि पता लगे कौन कौन इस बात के समर्थन में हैं, और पूरे पश्चिम बंगाल में ये बात पहुंचे और यहाँ की सरकार के पास भी ये बात पहुंचे। कौन कौन चाहता कि दुर्गा पूजा में मांस मदिरा की दुकानें बंद हो जाएं पश्चिम बंगाल में?
3: तो बागेश्वर बाबा के बारे में जानता नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बाहर से आके कोई बाबा सब ठीक कर देंगे तो बंगाल के लोगों का आज़ादी क्या है? लोग जैसे चाहते हैं कमिटी वैसे ही पूजा करेंगे, नियम पालन करके ही करेंगे, इसमें बागेश्वर बाबा कहाँ से आए?
4: बागेश्वर बाबा पश्चिम बंगाल में क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये बोलने का विषय शायद उसका नहीं है। वो बोल ही सकते हैं, आज तो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, जो सारे लोग वेजिटेरियन बन जाओ, कोई तो वेगन बन गया, ये तो चलते हैं दुनिया भर में। अब भी अपील कर दीजिए जो सब मटन खाने के लिए निकल पड़े, ये तो अकबर का विषय है। एक संत होने का नाते ऐसा वो बोल ही सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे कोई ठीक कर देंगे ऐसा नहीं है। और आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बागेश्वर बाबा भारतीय जनता पार्टी का मैंने कोई हमारा ऊपर भी कोई पोस्ट में लेकर बैठ गया।
5: सामान्यतः हमारे देश में धारणा है, सनातन धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि दिया है, इसलिए पूजा पाठ जब होता है उस समय हिंसा नहीं हो और मांस ना बेचे, इसलिए शाकाहारी भोजन होना चाहिए, सात्विक भोजन, पूजा का वातावरण बनता है। लेकिन बंगाल में क्या है, यहाँ काली भक्त है लोग, माँ काली को और यहाँ बलि चढ़ाया जाता है और कितने भी देवता है यहाँ बलि चढ़ता है, माँ दुर्गा को भी बलि चढ़ता है नवमी के दिन और उसको प्रसाद के रूप में लोग लेते हैं, इसीलिए यहाँ की परंपरा ही दूसरा है। यहाँ भगवान को प्रसाद में मछली खिलाया जाता है, ये परंपरा है और युगों से चलते आ रहा है। तो संतों ने अपने ढंग से बोलते हैं सबको कि पूजा के समय सात्विकता रहना चाहिए और पूजा का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, इसलिए जहाँ पूजा हो रहा है वहाँ से दूर बेचे, जिसका इच्छा है वो खाएगा।
2: सब में कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा और हृदय से माता रानी को कैसे बुलाया जाएगा, ये कोई आरएसएस, कोई हिंदू महासभा, कोई बीजेपी और उनके चट्टे पट्टे जितने बाबा लोग हैं वो लोग तय करेगा, ये हो नहीं सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नया कॉन्सेप्ट है बीजेपी सत्ता में आने के बाद बंगाल में और बंगाल के समाज को इन्फ्लुएंस करने का, भारतीय जनता पार्टी का जो एक कोशिश है, ये कभी कामयाब नहीं होगा बंगाल के मिट्टी में।
1: All right, so huge controversy and Bengalis up in arms over the policing of their food choices, especially for Durga Puja. With that, we'll slip into a short break. More news updates on the other side. Stay with us.
6: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: All right, let's shift focus now to battleground Punjab, and a huge political firestorm has erupted there after the death of a man by suicide, and with drugs back in focus in Punjab. Now, this is after an individual died by suicide and he blamed a state minister over this. In a video recorded before his death, the deceased Gulzar Singh allegedly held that Punjab Minister Harpal Singh Cheema responsible, claiming he had questioned the minister about drugs and his son's addiction. Now, these allegations have triggered a political attack on the Bhagwant Mann government. Congress has alleged that the man was under pressure. The BJP has demanded Cheema's removal from his post and said that questioning our government comes with a price. The price is death. Meanwhile, BJP has planned an anti-drug yatra in 117 assembly seats in Punjab. A BJP chief, Nitin Nabin, will be flagging off that yatra.
1: ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਰਪਾਸ ਹੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
2: ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੇ
1: ਚਿੱਟਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ।
3: ਟੂਰ ਬਣਜਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਿਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਭੜਕ ਗਏ ਜੀ, ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ।
4: और जिसकी वजह से धमकाया था उसको भी रखा है। और नंबर टू है, ही शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री इमीडिएटली।
5: पंजाब सरकार दे वजीरां नूं, मुख्यमंत्री नूं सवाल पुछन दी सज़ा सज़ाए मौत है। और ये गल कल गुलजार सिंह दी जिहड़ी दुखदाई डैथ हुई है, जिन्हें हरपाल चीमा नूं जदों वो दिड़बे हल्के च सन, उन्होंने आपका एक सवाल पुछया कि जिहड़े नशे ने चिट्टा उन्हां उसका मुंडा, वह कहिंदा जी मे इन्ना नशा बिक रहा कि कोई हिसाब नहीं। उन्हें आपके मुंडे की भी गल की, और जदों सवाल किया हरपाल चीमे नूं जो उहदी दुर्दशा हुई, उस तो बाद उस इंसान ने एक सियाने ब्याने गुलजार सिंह नूं इस तरीके नाल आम आदमी पार्टी ने मजबूर करता, जिहड़ी सियासत करती है नशिया के नौ ते। और उस गुलजार सिंह ने अखीर च यूमिलेट हो के, तंग परेशान हो के, उस तो दबके मारे गए कि तेरे ते परचा बना देंगे, क्योंकि उन्हें हिम्मत की कि जे सरकार उन्हां लोकां ने चुनी सी, उन्हां लोकां ने एक सवाल करने।
0: All right, so huge controversy there and a political slugfest in Punjab after the death by suicide of that man, where he has spoken about his son and drugs. With that, we'll slip into a short break. More news on the other side.
6: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: investigations and to hold everyone responsible, accountability under the law. We are not seeking revenge, we are seeking justice.
1: अगर हमारा फेशियल अगर ऐसे नहीं होता तो होता भी नहीं हमारे साथ ये, पर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेसिज्म. प्लेफुल था, बहुत एनर्जेटिक था, फनी था, बट नो नथिंग विथ फाइटिंग.
2: इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम दैट वन ऑफ आवर ब्रदर्स, अ गिफ्टेड म्यूजिशियन, अ म्यूजिक टीचर who gave life and music to thousands of people, was beaten to death by 8 men in Sunlight Colony, Hilo Creek, in New Delhi, about more than 24 hours ago. We are here gathered to give our condolences to our brother and also call upon the government of India that they should end all forms of racism and racial violence against people of Northeast India.
3: Everyone has been caught in the CCTV camera. What we want is the justice, and that justice should not be delayed, because justice delay is justice denied. We want them to, you know, under the fast track, they have to be given the strictest, you know, punishment, and yes, we want it. We want justice, because this has been very frequent. The people of Northeast has been facing all these racism and, you know, crimes against us.
4: What they are saying, the racism angle and the attack, or, you know, this kind of prejudice that the people from Northeast face, especially when they come to North India, in Delhi and other cities, it is backed by data, ladies and gentlemen. Remember, I just give you an example. A few days back, a 4-year-old young girl, Twinkle, who went viral after she came on camera, well, somebody called her Chinese. Now, this is something that happens so very often. All of us can keep our eyes closed, but this does happen. And that this is not the first time a racial kind of an attack in the national capital has taken place. A man was beaten up. Of course, this is mob violence that took place. But there is always this fear that people from Northeast have about their safety and security living in their own country. And that is a shame, that a burden all of us would have to bear. I want to very quickly also, in fact, tell you that all these people, those who were involved in this heinous crime, have been arrested, including the minor. Let's listen into what the Delhi police had to say about this.
5: मेरे साथ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार हैं, उनसे बात करते हैं. सर, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं?
6: देखिए, करीब कल 1:30 बजे के करीब हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें जो हमारे विक्टिम हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया था. जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तब हमें पता चला कि 6 और 7 की रात के बिटवीन 11:30 to 12 कुछ लड़के इनकी गली में खड़े होकर शोर शराबा कर रहे थे. उसी के ऊपर जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो झगड़ा बढ़ा और मारपीट हुई, और उसी मारपीट में इनको कुछ चोटें आई. उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर करीब 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई.
5: सर, कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, क्या प्रोफाइल है उनका?
6: अभी तक हम लोग इसमें 7 लोग अरेस्ट कर चुके हैं और 1 माइनर अप्रिहेंड कर चुके हैं. वो सब लोग वहाँ पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट में या तो वर्कर थे या एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे.
7: Because of altercation and because of requesting to make lower noise around this residential area, a man from Manipur, a renowned singer from the state of Manipur, was chased. He was killed, and certainly now the Delhi police have investigated and arrested at least 7 people. One minor has been apprehended. Joining with me is one of the eyewitnesses and also the neighbor of Vikram Singh. Ma'am, what happened on the intervening night of 6th and 7th?
8: रात को 12:00 दो तीन मिनट में हुआ होगा. मैं खाना खा के सोने वाली थी, तो वहाँ पे ना एकदम औरतों का चिकने या मर्द का चिकने का बहुत भयंकर आवाज़ आया था, एकदम लड़ाई झगड़ा का, मारपीट का. तो उसके बाद है ना, मैंने ये तो बहुत अजीब सा माहौल था, तो मैं बाहर मतलब देखने के लिए कोशिश किया दौर से, हमारी जो दौर का कैमरा होता है ना उसी में, तो उसी में ना कुछ आदमी लोग का तो दिखाई दिया, फेस नहीं दिखाई दिया था. उसके बाद मैंने सूरज लॉक खोल के चेन तो लगाया हुआ था, उसके बाद देखा ना तो मुझे लग रहा था 3-4 ऐसे उतरे हुए, तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बेलकोनी में आया. बेलकोनी में यहाँ पर 2 लड़के खड़े थे, तो किसी को

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

0: A political firestorm has erupted in Punjab over the drug crisis after a man died by suicide. In a video recorded before his death, deceased Gulzar Singh allegedly held Punjab Minister Harpal Singh Cheema responsible, claiming he had questioned the minister about drug and his son's addiction. The allegations have now triggered a massive political firestorm where the political attack is on the Bhagwant Mann government. Congress has alleged the man was under pressure. The BJP has demanded Cheema's removal from his post and has said Aam Aadmi Party government, in fact, has made this man pay the ultimate price. Meanwhile, the BJP has planned an anti-drug yatra in 170 assembly constituencies of Punjab.
1: ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
2: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ?
1: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ।
2: ਚਿੱਟੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।
2: ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀੜ ਤੋਦੇ ਤੋਂ?
1: ਹਾਂਜੀ।
2: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ?
1: ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਜੀ।
2: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
1: ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜੀ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ।
2: ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਸਨੇ?
1: ਚਿੱਟਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ।
3: ਟੂਰ ਵਣਜਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਿਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਭੜਕ ਗਏ ਜੀ, ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੇ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ।
4: ਉਸ ਪਰ ਅਪੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਾ ਕੇਸ ਹਰਪਾਲ ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਛੋੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪਾਂਚ।
0: All right, let's straight now go across to Prime Minister Narendra Modi's event at the FinTech event in Mumbai, where he is addressing the gathering. Listen.
5: Desh videsh se aaye sabhi guests aur delegates ka main abhinandan karta hu. Mujhe khushi hai ki aaj yahan ek aur hat-trick lagi hai. एक हैट्रिक तो 2024 में, तीसरी बार सरकार बनने से लगी थी, और ये हैट्रिक आप सभी के बीच आने से जुड़ी है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगातार ये मेरा थर्ड ईयर है। ये हैट्रिक बताती है कि विकसित भारत के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका काम कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, हर बार जब मैं यहां आता हूं तो मुझे पहले से ज्यादा युवा दिखाई देते हैं, पहले से ज्यादा एनर्जी अनुभव होती है। मुझे पॉसिबिलिटीज का दायरा एक्सपेंड होता दिखता है। ये साफ साफ लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ड्रीम्स और बोल्ड हो रहे हैं, और इसलिए विकसित भारत के फ्यूचर को लेकर मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है। साथियों, फिनटेक की इस एनर्जी के बीच ही मुंबई में सांस्कृतिक ऊर्जा भी इन दिनों चरम पर है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है। हमारे यहाँ हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। मैं गणपति बापा को नमन करते हुए आप सभी को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, दुनिया के हालात क्या है ये आप सब भली भांति जानते हैं। दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई हैं। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है और ये जो विश्वास है

जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरिन रेटिंग्स को ए कैटेगरी में अपग्रेड किया है। अपग्रेड करना तो खुशी की बात है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि यह सौभाग्य 3 दशक के बाद आया है। 30 साल के बाद ये दिखाता है कि भारत के ग्रोथ मोमेंटम, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बीते वर्षों में किए हैं, उन सब को लेकर दुनिया कितनी आश्वस्त है। और मैं फिर कहूंगा कि भारत की ये रिफॉर्म एक्सप्रेस और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। साथियों, भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले 25 अगस्त को यूपीआई ने अपने 10 साल पूरे किए हैं। 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा, तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था और मैं वेल इन्फॉर्म्ड लोगों की बात कर रहा हूं। चेहरा याद कर लीजिए। मैं उन करोड़ों भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके तब बैंक अकाउंट भी नए नए खुले थे। उनकी तो अनेक पीढ़ियों ने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था, लेकिन आज 10 वर्ष बाद देखिए, वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। साथियों, आज अकेले अगस्त महीने में ही यूपीआई से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। यानी हम यहां जितनी देर से बैठे हैं, सिर्फ 10 मिनट में ही औसतन 50 लाख से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन देश भर में हो चुके होंगे। यही इंपैक्ट है जिसके कारण फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, उन्होंने कहा था कि यूपीआई केवल टैक्स स्टोरी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल स्टोरी है। और साथियों, यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहां कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आरती और मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, every day.
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा प्योर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा प्योर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
4: टू हाउसेस हियर दैट वाज स्ट्रक
5: upon the United Nations to dedicate one day for the elimination of child marriage from the world.
6: Globally, the priests decide to...
7: Child marriage in its entirety.
8: Child marriage ki jab hum baat karte hai, to it is not limited just to a girl.
9: Samudai mein hum sakta hai kisi balika ka baal vivah na ho.
10: Baal vivah rokne ke liye
11: har sambhav prayas karenge.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
8: Bade bade imtihanon se guzarta hai. Waqt tarashta hai jise. To jaane kya kya na karta hai. जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
9: Across the country,
10: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest spa at home.

0: न्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest spa at home.
1: Hindustan mile, Hindustan se.
2: देश का टायर जेके टायर
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा
5: सबका राजा प्योर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
8: टू हाउसेस हियर दैट वाज स्ट्रक लास्ट नाइट,
9: द हीट,
8: द टेलटेल साइंस ऑफ वाटर,
9: द डस्ट,
8: समथिंग इज चेंज्ड इन पहलगाम,
9: द फ्रंट लाइंस, दैट्स शिव्स इंडिया।
8: पाकिस्तान आर्मी हैज वायलेटेड द सीज फायर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल,
9: इट्स होप्स,
10: कांग्रेट चीफ मिनिस्टर विजय,
9: इट्स यर्निंग, इट्स ड्रीम्स, एट नाइन He brings it all home. Your stories, your fights, your voice. Because what matters to you, matters to Shiv. India Matters, 9 p.m. on NDTV.
11: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
12: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
13: Who failed? And this remains a campaign here on NDTV
12: so you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood, weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV when it really matters.
14: Meetha या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
0: नो मैटर व्हाट योर डे थ्रोज एट यू स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कूल।

बहुत मैं इसके लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहले दिन से एनडीटीवी इस रास्ते पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा।

0: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Awasthi. Before we get to the big stories, here's a quick check of the headlines that we're tracking. Prime Minister Modi makes Dhurandhar entry in Gujarat, launches infrastructure projects, and a sharp attack on the opposition. Second Naraz Phoofa jibe at Rahul Gandhi, accusing him of cribbing over anything and everything. Delhi's building collapse fallout now surfaces. MCD will be carrying out demolition of over 20 illegal structures around Satya Niketan in southwest Delhi. Supreme Court is now set to hear a matter on the tragedy that killed 7 people on September 10th. Tamil Nadu Chief Minister Vijay faces DMK heat over jaw gesture after fiery showdown in the Tamil Nadu Assembly. The Chief Minister then issued a clarification over his gesture after Stalin says, "Maintain the dignity." Vijay claims that his action was not intentional. Punjab man confronts Mantri over drug menace, dies by suicide later and names Minister Cheema in the video. Huge political showdown erupts between the Aam Aadmi Party and the Akali Dal. Manipur singer Vikram Singh beaten to death in Delhi, killed for objecting to loud noise and public drinking outside his residence. The CCTV has captured the murder. Mob fleeing crime scene. All now have been arrested. We are starting this edition with the breaking news that's coming in, where there is a controversy over a video that's now surfacing of DK Shivakumar's agri market visit. In the video, as you see, there are different plates that are being used. This is what the BJP has alleged. The BJP hitting out at DK Shivakumar alleges that DK used a different plate and glass, and the workers that were beside him used a plastic one. The BJP has also alleged that there are different plates and it exposes the double standards of the Congress party. However, sources in the Chief Minister's office, DK Shivakumar's office, now tell NDTV that the Chief Minister of Karnataka, DK Shivakumar, did not choose the plate himself and that it was given to him by the workers there. Deepak joins us live for more details on this. Deepak, recent controversy coming out, the BJP alleging Congress's double standards. What is it that you're learning from the Congress sources on this controversy?
1: It seems like this, of course, could become a big, contention between the Congress and the BJP. However, as far as these visuals are concerned, the sources in the Congress have clarified that the Chief Minister was there on an inspection. He wanted to speak to, the traders, the people who work there at the APMC yard. And during that interaction, one of the street vendors there, he himself offered a plate of idlis to the Chief Minister. And the Chief Minister has just, consumed it, and that's what the clarification has come in. We'll really have to see whether an official response comes in from the Chief Minister. The BJP, of course, is trading their guns at the Congress party over this, and we could expect this to snowball into another controversy.
0: Right, Deepak, thank you very much for getting us those details. Also being joined by Pradeep Bhandari, BJP spokesperson on the phone line. Pradeep, you've heard what our reporter has to say. The BJP is alleging that this is a double standard of the Congress party. However, the Congress also have said that it was not DK Shivakumar who had asked for a different set of plate. It was the workers themselves who had gone out and offered him that.
2: So this tells you that even workers know that the Congress leaders will not eat in the same plate as the workers are eating. This further exposes that even in the mind of the laborers and the poor people, the Congress party is a party of shanshas, and the Congress party shows double standards. Had DK Shivakumar been a man who believed in equality, he would have eaten in the same plate as the laborer is. So if you recall Rahul Gandhi's statement, you had a story from Tamil Nadu, which is a Congress-ruled state, where there is discrimination done on the basis of caste line. Now you have another Congress-ruled state where the Congress Chief Minister, on the instructions of Rahul Gandhi, is discriminating against the poor laborers coming from the marginalized community. This tells you how much hate the Congress party has for the laborers and the poor people. This exposes the Congress party and Rahul Gandhi further.
0: Right, but Pradeep, don't you think that if DK hadn't asked for a different set of plate, and because it was offered to him, shouldn't it had just been died down there, and the need for it to become controversial at this point in time, even after clarification, even after what the workers over there chose to do with the chief minister, be it with pure intention, shouldn't turn so controversial at this point?
2: No, it is the DK Shivkumar who is, by choosing not to eat in the same plate as the laborers are eating, exposing that the Congress party believes there are two laws, one for the Congress leaders and other for the people and the common citizens. And the same mindset of a Maibaap culture, the Congress party had ruled the country in the past under UPA and is now doing so in Karnataka. Rahul Gandhi practices something else and preaches something else. In fact, what DK Shivkumar has done is what Rahul Gandhi had done in the past, and you saw Narayan Swamy's minister picking up slippers for Rahul Gandhi. It's a shame that these people are considering this country as, from a point of view of Maibaap, they should apologize to say the least.
0: Right, Mr. Bhandari, thank you very much for sharing your views with us. Remains to be seen on how Congress responds to that recent fallout that has now taken a political turn. For the moment, we move on to some other stories that we are tracking, and this one is about a sexual harassment controversy that has now erupted at the JNU campus. Delhi has now turned into a political confrontation on the campus. Now, the AVBP held a protest on the campus alleging that the accused professor in the case is linked to the Congress party. It has also accused the university panel of delaying action and has questioned whether the political influence is at play. There are 11 students who have approached the university's internal complaints committee with allegations against a professor, including inappropriate conduct during Viva examinations, sexually suggestive remarks, and even, according to the complaints, offers of higher marks in exchange for sexual favors. Now, the allegations first surfaced after a student shared her experience in a student's only WhatsApp group following the Viva examinations that were held in the month of May. There were other students then who came forward with similar accounts. The university committee had then begun proceedings, and students have been asked to record their statements. We earlier spoke to the AVBP General Secretary, listening to what he had to say on the matter. Now, Vikas Patel, ABVP Joint Secretary, is now joining me on the phone line. Mr. Patel, what do you make of this? Students protesting, and we are learning ABVP, your party, has only gone out and said that the professor has links with the Congress. That's why he's being shielded despite those sexual harassment complaints against him.
3: देखिए क्या है कि इस तरह की जो घटना है वो मई में आई थी और ये घटना सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसको सिटी प्लस जेएनएम बोला जाता है वहाँ घटना है और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वाइवा में ऐसा मतलब कि जो सोशल मीडिया से ऐसा खबर आ रहा है और कुछ छात्रों से बात हुई है और इसका कंप्लेन जो हुआ था उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि वाइवा में ऐसे कुछ फेवर्स के लिए मतलब कि सेक्सुअल फेवर्स के लिए ऐसा बोला गया था और उसके अलावा कुछ ऐसे चैट्स भी हुए थे जिनका अभी एविडेंस तो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं और तो ऐसे छात्रों से संपर्क में भी है लेकिन कोई छात्र डर के मारे सामने नहीं आ रहा है. ऐसे कुल 11 छात्रों ने आईसी में कंप्लेन किया था और विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत जो बना है आईसी जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी हर इंस्टीट्यूट में होते हैं उन इंस्टीट्यूट को 90 दिनों के अंदर अपना जो इन्वेस्टिगेशन होता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट देना होता है और अगले 10 दिनों में देना होता है. अभी 4 महीने हो चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और प्रशासन भी
0: 4 महीने हो चुके हैं
3: जी 4 महीने मई की घटना है और उसके बाद से ही अभी तक इस पर कोई प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है और जो आईसी में रिप्रेजेंटेटिव है वो लेफ्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए और ये पहली घटना नहीं हुई है. जेएनयू में इस तरह की घटनाएं होती रही है और जब भी इस तरह की घटना होती है तो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जो जेएनयू के लोग हैं आईसी के इससे पहले जीएसपीएस में जो लोग थे वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इस पे जजमेंट देते हैं और अपने कैडर्स के लोगों को बचाने का काम करते हैं चाहे वो फैकल्टी हो चाहे इनके कैडर के खुद के लोग हैं.
0: From the national capital, let's now tell you what's making headlines in the state of Tamil Nadu. Tamil Nadu's political battle has now spilled onto the floor of the assembly, and this time it has turned extremely personal. Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, launched a blistering attack on the DMK, taking aim at its corruption record and challenging the party's carefully cultivated Mr. Clean image. But one moment in the speech has triggered a fresh political storm. The DMK claims that Vijay mocked the former chief minister of Tamil Nadu, MK Stalin's physical injury and an injury that Stalin suffered after being assaulted in custody during the emergency period. DMK MP Kani Mohi has also accused the chief minister of touching lowest of lows with his comments on MK Stalin. Ally CPIM has also hit out at the chief minister. The left says political criticism is one thing, but ridiculing a personal injury is beyond the line. The chief minister of Tamil Nadu, Vijay, had then gone on to clarify his gesture in the assembly by saying that the gesture he made yesterday was with the hand and jaw, was not intended to hurt anyone. Now, why did he have to come up with that clarification is a point of contention. But here are the reactions that we're tracking on the story.
4: நம்ம நண்பர்கள் எது பேசினாலும் நாங்க மிஸ்ஸாவை பார்த்தவங்க மிஸ்ஸாவை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்கும் மிஸ்ஸாவை கொண்டு வந்து விட்டா என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. ஐயா பெரியவர்களே, எல்லாருக்கும் அந்த மிஸ்ஸாவை பத்தின ஹிஸ்டரிய பத்தி எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும்.
5: மிஸ்ஸா எமர்ஜென்சியை கொச்சப்படுத்துறாரு. நாடு முழுவதும், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, நாடு முழுவதும் அதை எதிர்த்து ஜனநாயகத்திற்காக போராடி எத்தனை பேர் சிறைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை சேர்ந்த தோழர்கள் எத்தனை பேர் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க, இதன் வரலாறு தெரிய வேண்டும். கேள்வி சட்டமன்றத்தில் கேட்கப்பட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லணும். அவங்க ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்காங்க, அதை புரிஞ்சுக்காம மற்றவங்க மேலே குற்றம் சொல்லுவது தான் வந்து சட்டமன்ற நடவடிக்கை அப்படின்னு அதை கேலி கூத்தாக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் டுடே the chief minister of Tamil Nadu Vijay avargalude pechu vande it touched the lowest of the low.
6: Public document edalam vande court la file pannadala enga engalam aadharam ketkadalo adula visaranaiku endha vedhilum visaranai pathiyo neethimandrathai pathiyo edhum pesala enga engalam aadharam irukudho adha aadharathai kurippittu pesinar. சர்க்காரிய கமிஷனை பத்தி இந்த அவையிலே எல்லாமே இருக்கு, இருக்கிறதானே பேசினாரு. மிசா குறிச்சு நிறைய பேசியாச்சு. மிசால யார் யார் வேணாலும் அந்த மிசா காலங்களில் திருட்டு வழக்கு, வழிப்புறை வழக்கு, பெண்கள் குறித்து வழக்கு கைது செய்யலாம். ஆனால் எல்லாமே மிசாவில் கைது செய்தால் கன்சிடர்லாம் பண்ண முடியாது. மிசாவில் வழிப்புறை வழக்கும் இருக்கும், கொலை வழக்கும் இருக்கும், திருட்டு வழக்கும் இருக்கும், இல்லை பெண்கள் குறித்து வழக்கும் இருக்கும். ஏன் 20 அம்ச திட்டத்தின் திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ண திருமதி இந்திரா காந்தியார் மம்மையார் இந்திரா காந்தியாரை பற்றி 21 அம்சம் திட்டம்னு சொல்லி அவதூறாக பேசினவங்க அப்போ இருந்த இப்போ இருக்க முன்னாள் முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் 21 அம்சம் திட்டம்னு அவதூறாக பேசி பல விஷயங்களை பேசின அடிப்படையில் தான் அப்போ கைது செய்யப்பட்டார்.
0: Moving on, BJP MP and actor Kangana Ranaut has now come out in defense of actor Trisha Krishnan amid back-to-back political attacks on her. Pointing to the controversy in Tamil Nadu, Kangana has asked, why is it that when a women relationship involves two people, the woman alone is dragged and targeted? She has also asked, and I quote her here, why is it only that women are targeted over relationships? Kangana also questioned how long will society continue with this double standard and whether we truly respect women while publicly tearing down their character.
7: ये हमें ये हम सब जानते हैं ये कि सिर्फ भारत की ही तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सीमित है. चाहे वो महिला काम करने वाली हो या वो सफल हो या वो नेत्री हो या वो पावर की पोजीशन पर हो, अथॉरिटी की पोजीशन पर हो, हमेशा उसको लेकर जो है हमेशा उसके चरित्र को लेकर ही उसे जो है नीचे गिराया जा रहा है. और तमिलनाडु में भी आपने देखा हुआ है कि वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार अभिनेत्री और जो भी उनके जो संबंध है जिस तरह से भी वो दोनों ही पक्ष के होते हैं, लेकिन गाली गलोच के लिए और चीरहरण के लिए हमेशा महिला को ही ढूंढा जाता है. तो इस तरह की जो है ये जो कैरेक्टर लिंचिंग जो है ये महिलाओं की कब रुकेगी? ये जो है कहीं ना कहीं हमें समाज के रूप में अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या हम वाकई में महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं.
0: Let's now take you to a story from the national capital where it's nothing short of a horror, a murder horror. The man that you will see on your screen in just some moments from now, his name is Chongtham Vikram Singh. He is a Manipuri musician. He was beaten to death in Delhi after objecting to loud music and drinking outside his home. And what started as a confrontation over the disturbance quickly escalated into a violent attack. There are CCTV visuals that show how the mob was chasing Vikram Singh upstairs, followed by the accused, then fleeing the spot after beating him to death. Vikram Singh later succumbed to his injuries. There are 7 people who have been held in the connection with his mob lynching. A neighboring dispute over loud music and drinking outside his home turned into a horrifying mob lynching. Meanwhile, the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has condemned the incident and has slammed the government over it. The deceased Vikram Singh's wife has requested space for the family to grieve in peace, hoping no one else goes through the same fate. Speaking on behalf of all Manipuris was the founder of Forum of Northeast Against Racism, Meena Lakshmi, who reiterates that any more such incident shall spark a conflict.
8: Because of altercation and because of requesting to make lower noise around this residential area, a man from Manipur, a renowned singer from the state of Manipur, was chased. He was killed, and certainly now the Delhi police have investigated and arrested at least 7 people. One minor has been apprehended. Joining with me is one of the eyewitnesses and also the neighbor of Vikram Singh. Ma'am, what happened on the intervening night of 6th and 7th?
9: रात को 12 बज के 2-3 मिनट में हुआ होगा. मैं खाना खा के सोने वाली थी, तो वहाँ पे ना एकदम औरतों का चिकने या मर्द का चिकने का बहुत भयंकर आवाज़ आया था, एकदम लड़ाई झगड़ा का, मारपीट का. तो उसके बाद है ना, मैंने ये तो बहुत अजीब सा माहौल था, तो मैं बाहर मतलब देखने के लिए कोशिश किया दौर से, हमारी जो दौर का कैमरा होता है ना उसी में, तो उसी में ना कुछ आदमी लोग का तो दिखाई दिया, फेस नहीं दिखाई दिया था. उसके बाद मैंने सूरज लॉक खोल के चेन तो लगाया हुआ था, उसके बाद देखा ना तो मुझे लग रहा था 3-4 ऐसे उतरे हुए, तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बेलकोनी में आया. बेलकोनी में यहाँ पर 2 लड़के खड़े थे, तो किसी को फ़ोन पर बुला रहा था, नीचे आओ नीचे आओ, बहुत ज़ोर ज़ोर से. मैंने बोला था आप हमारे केयर टेकर के भाई है क्या, मैंने पूछा उसे, तो उन्हें नहीं ये कहा था तब तक. अच्छा, तो अंदर क्या हो रहा है, मैंने चिल्ला के बोला था, तो उसने बोला था पता नहीं है. उसके बाद है ना पीछे देखा था, ऊपर से तो पीछे देखेगा, फेस भी नहीं देखेगा, नीचे से 3-4 लड़के जाते हुए मैंने देखा. उसके बाद मैं अंदर चले गया और थ्री मैंने चलो नॉर्मली धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मैंने इतना हद तक नहीं सोचा किसी का जान जाए.
10: His sudden death has left a loss that words cannot be expressed. We also ask the authority to ensure a fair and impartial investigations and to hold everyone responsible, accountability under the law. We are not seeking revenge, we are seeking justice.
11: अगर हमारा फेशियल अगर ऐसे नहीं होता तो होता भी नहीं हमारे साथ ये, पर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेसिज्म. प्लेफुल था, बहुत एनर्जेटिक था, फनी था, बट नो नथिंग विद फाइटिंग.
12: Everyone has been caught in the CCTV camera. What we want is the justice, and that justice should not be delayed, because justice delay is justice denied. We want them to, you know, under the fast track, they have to be given the strictest, you know, punishment. And yes, we want justice, because this has been very frequent. The people of Northeast has been facing all this racism and, you know, crimes against us.
13: मेरे साथ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार हैं, उनसे बात करते हैं. सर, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं?
14: देखिए, करीब कल 1:30 बजे के करीब हमें एक PCR कॉल मिली थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें जो हमारे विक्टिम हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया था. जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तब हमें पता चला कि 6 और 7 की रात के बिटवीन 11:30 to 12 कुछ लड़के इनकी गली में खड़े होकर शोर शराबा कर रहे थे. उसी के ऊपर जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो झगड़ा बढ़ा और मारपीट हुई, और उसी मारपीट में इनको कुछ चोटें आई. उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर करीब 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई.
13: सर, कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, क्या प्रोफाइल है उनका?
14: अभी तक हम लोग इसमें 7 लोग अरेस्ट कर चुके हैं और 1 माइनर अप्रेहेंड कर चुके हैं. वो सब लोग वहाँ पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट में या तो वर्कर थे या एज अ डिलीवरी बॉय काम करते थे.
0: Let's now also tell you about another important event that happened today, where the Prime Minister was in Vadodara in Gujarat this afternoon. And while he was going to address the student, on his way, he made a Dhurandhar entry into the Namo for Viksit Bharat event in Gujarat's Vadodara. The Prime Minister launched a scathing attack on the opposition and the UPA government era as well. He targeted the previous UPA government over the delay in completing the dedicated freight corridor, saying that the project remained stuck in bureaucratic processes for years before his government accelerated its implementation. He also renewed his Naraz Fufa jibe on opposition and said that the opposition leaders cannot be happy with India's vikas and that they keep cribbing about everything. Here's those big attacks of the Prime Minister.
15: Jhoot ki gunj se bharmane wale to har chauhraye par mil jayenge. Lekin Bharat ka naujawan sach ki hunkar se chalta hai. Sach ki hunkar ke saath chalta hai. सच की हुंकार के लिए चलता है. जेएनपीटी पोर्ट से बड़ोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है. यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया. इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया. 250 ट्रक. अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा. अब फूफाजी को काम मिल गया. पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई. और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था.
0: And with that, it's time for us to slip in over a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
16: Track the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: The university panel of delaying action and has questioned whether the political influence is at play. There are 11 students who have approached the university's internal complaints committee with allegations against a professor, including inappropriate conduct during Viva examinations, sexually suggestive remarks, and even, according to the complaints, offers of higher marks in exchange for sexual favors. Now, the allegations first surfaced after a student shared her experience in a student's only WhatsApp group following the Viva examinations that were held in the month of May. There were other students then who came forward with similar accounts. The university committee had then begun proceedings and students have been asked to record their statements. We earlier spoke to the AVBP General Secretary, listening to what he had to say on the matter. Now, Vikas Patel, ABVP Joint Secretary, is now joining me on the phone line. Mr. Patel, what do you make of this? Students protesting, and we are learning ABVP, your party, has only gone out and said that the professor has links with the Congress. That's why he's being shielded despite those sexual harassment complaints against him.
1: देखिए क्या है कि इस तरह की जो घटना है वो मई में आई थी और ये घटना सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसको सिटी प्लस प्लेनम बोला जाता है वहाँ घटना है और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वाइवा में ऐसा मतलब कि जो सोशल मीडिया से ऐसा खबर आ रहा है और कुछ छात्रों से बात हुई है और इसका कंप्लेन जो हुआ था उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि वाइवा में ऐसे कुछ फेवर्स के लिए मतलब कि सेक्सुअल फेवर्स के लिए ऐसा बोला गया था और उसके अलावा कुछ ऐसे चैट्स भी हुए थे जिनका अभी एविडेंस तो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं और तो ऐसे छात्रों से संपर्क में भी है लेकिन कोई छात्र डर के मारे सामने नहीं आ रहा है। ऐसे कुल 11 छात्रों ने आईसी में कंप्लेन किया था और विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत जो बना है आईसी जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी हर इंस्टीट्यूट में होते हैं उन इंस्टीट्यूट को 90 दिनों के अंदर अपना जो इन्वेस्टिगेशन होता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट देना होता है और अगले 10 दिनों में देना होता है। अभी 4 महीने हो चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और प्रशासन भी
0: 4 महीने हो चुके हैं
1: और 4 महीने मई की घटना है और उसके बाद से ही अभी तक इस पर कोई प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है और जो आईसी में रिप्रेजेंटेटिव है वो लेफ्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए और ये पहली घटना नहीं हुई है। जेएनयू में इस तरह की घटनाएं होती रही है और जब भी इस तरह की घटना होती है तो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जो जेएनयू के लोग हैं आईसी के इससे पहले जीएसपीएस में जो लोग थे वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इस पे जजमेंट देते हैं और अपने कैडर्स के लोगों को बचाने का काम करते हैं चाहे वो फैकल्टी हो चाहे इनके कैडर्स के खुद के लोग हैं।
0: From the national capital, let's now tell you what's making headlines in the state of Tamil Nadu. Tamil Nadu's political battle has now spilled onto the floor of the assembly and this time it has turned extremely personal. Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, launched a blistering attack on the DMK, taking aim at its corruption record and challenging the party's carefully cultivated Mr. Clean image. But one moment in the speech has triggered a fresh political storm. The DMK claims that Vijay mocked the former Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin's physical injury and an injury that Stalin suffered after being assaulted in custody during the emergency period. DMK MP Kani Mohi has also accused the Chief Minister of touching lowest of lows with his comments on M.K. Stalin. Ally CPIM has also hit out at the Chief Minister. The left says political criticism is one thing, but ridiculing a personal injury is beyond the line. The Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, had then gone on to clarify his gesture in the assembly by saying that the gesture he made yesterday was with the hand and jaw, was not intended to hurt anyone. Now, why did he have to come up with that clarification is a point of contention. But here are the reactions that we're tracking on the story.
2: நம்ம நண்பர்கள் எது பேசினாலும் நாங்க மிஸ்ஸாவை பார்த்தவங்க மிஸ்ஸாவை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்கும் மிஸ்ஸாவை கொண்டு வந்து விட்டா என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல ஐயா பெரியவர்களே எல்லாருக்கும் அந்த மிஸ்ஸாவை பத்தின ஹிஸ்டரிய பத்தி எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும்
3: மிஸ்ஸா எமர்ஜென்சியை கொச்சப்படுத்துறாரு நாடு முழுவதும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை நாடு முழுவதும் அதை எதிர்த்து ஜனநாயகத்திற்காக போராடி எத்தனை பேர் சிறைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை சேர்ந்த தோழர்கள் எத்தனை பேர் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க இதன் வரலாறு தெரிய வேண்டும் கேள்வி சட்டமன்றத்தில் கேட்கப்பட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அவங்க ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்காங்க அதை புரிஞ்சுக்காமல் மற்றவங்க மேலே குற்றம் சொல்லுவது தான் வந்து சட்டமன்ற நடவடிக்கை அப்படின்னு அதை கேலி கூத்தாக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் டுடே தி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு விஜய் அவர்களுடைய பேச்சு வந்து இட் டச்ட் தி லோவஸ்ட் ஆஃப் தி லோ.
4: பப்ளிக் டாக்குமெண்ட் அதெல்லாம் வந்து கோர்ட்ல ஃபைல் பண்ணதுல எங்கெங்கெல்லாம் ஆதாரம் கேட்காதுங்களோ அதுல விசாரணைக்கு எந்த விதத்திலும் விசாரணையை பத்தியோ நீதிமன்றத்தை பத்தியோ எதுவும் பேசல. எங்கெங்கெல்லாம் ஆதாரம் இருக்குதோ அது ஆதாரத்தை குறிப்பிட்டு பேசினார். சர்க்காரியா கமிஷனை பத்தி இந்த அவையிலே எல்லாமே இருக்கு, இருக்கிறது தானே பேசினாரு. மிசா குறிச்சு நிறைய பேசியாச்சு. மிசால யார் யார் வேணாலும் அந்த மிசா காலங்களில் திருட்டு வழக்கு, வழிப்புறி வழக்கு, பெண்கள் குறித்து வழக்கு கைது செய்யலாம். ஆனால் எல்லாமே மிசாவில் கைது செய்தால் கன்சிடர்லாம் பண்ண முடியாது. மிசாவில் வழிப்புறி வழக்கும் இருக்கும், கொலை வழக்கும் இருக்கும், திருட்டு வழக்கும் இருக்கும், இல்லை பெண்கள் குறித்து வழக்கும் இருக்கும். ஏன் 20 அம்ச திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ண திருமதி இந்திரா காந்தியார் மம்மையார் இந்திரா காந்தியாரை பற்றி 21 அம்சம் திட்டம்னு சொல்லி அவதூறாக பேசினவர் அப்போ இருந்த இப்போ இருக்க முன்னாள் முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள். 21வது அம்சம் திட்டம்னு அவதூறாக பேசி பல விஷயங்களை பேசின அடிப்படையில் தான் அப்போ கைது செய்யப்பட்டார்.
0: Moving on, BJP MP and actor Kangana Ranaut has now come out in defense of actor Trisha Krishnan amid back-to-back political attacks on her. Pointing to the controversy in Tamil Nadu, Kangana has asked, why is it that when a woman relationship involves two people, the woman alone is dragged and targeted? She has also asked, and I quote her here, why is it only that women are targeted over relationships? Kangana also questioned how long will society continue with this double standard and whether we truly respect women while publicly tearing down their character.
5: ye hame ye hum sab jante hain ye kisi bharat ki hi tak simit nahi hai, pure vishw mein simit hai, chahe wo mahila kaam karne wali ho ya wo safal ho ya wo netri ho ya wo power ki position par ho, authority ki position par ho, hamesha usko lekar jo hai hamesha uske charitra ko lekar hi use jo hai niche giraya ja raha hai. aur tamil nadu mein bhi aapne dekha hua hai कि वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार अभिनेत्री और जो भी उनके जो संबंध है जिस तरह से भी वो दोनों ही पक्ष के होते हैं, लेकिन गाली गलौज के लिए और चीरहरण के लिए हमेशा महिला को ही ढूंढा जाता है. तो इस तरह की जो है ये जो कैरेक्टर लिंचिंग जो है ये महिलाओं की कब रुकेगी? ये जो है कहीं ना कहीं हमें समाज के रूप में अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या हम वाकई में महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं.
0: Let's now take you to a story from the national capital where it's nothing short of a horror, a murder horror. The man that you will see on your screen in just some moments from now, his name is Chongtham Vikram Singh. He is a Manipuri musician. He was beaten to death in Delhi after objecting to loud music and drinking outside his home. And what started as a confrontation over the disturbance quickly escalated into a violent attack. There are CCTV visuals that show how the mob was chasing Vikram Singh upstairs, followed by the accused, then fleeing the spot after beating him to death. Vikram Singh later succumbed to his injuries. There are 7 people who have been held in connection with his mob lynching. A neighboring dispute over loud music and drinking outside his home turned into a horrifying mob lynching. Meanwhile, the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has condemned the incident and has slammed the government over it. The deceased Vikram Singh's wife has requested space for the family to grieve in peace, hoping no one else goes through the same fate. Speaking on behalf of all Manipuris was the founder of Forum of Northeast Against Racism, Meena Lakshmi, who reiterates that any more such incident shall spark a conflict.
6: Because of altercation and because of requesting to make lower noise around this residential area, a man from Manipur, a renowned singer from the state of Manipur, was chased. He was killed, and certainly now the Delhi police have investigated and arrested at least 7 people. One minor has been apprehended. Joining with me is one of the eyewitnesses and also the neighbor of Vikram Singh. Ma'am, what happened on the intervening night of 6th and 7th?
7: रात को 12 बज के 2-3 मिनट में हुआ होगा. मैं खाना खा के सोने वाली थी तो वहाँ पे ना एकदम औरतों का चिकने या मर्द का चिकने का बहुत भयंकर आवाज़ आया था, एकदम लड़ाई झगड़ा का मारपीट का. तो उसके बाद है ना मैंने ये तो बहुत अजीब सा माहौल था तो मैं बाहर मतलब देखने के लिए कोशिश किया दौर से, हमारी जो दौर का कैमरा होता है ना उसी में, तो उसी में ना कुछ आदमी लोग का तो दिखाई दिया, फेस नहीं दिखाई दिया था. उसके बाद मैंने सूरज लॉक खोल के चेन तो लगाए हुआ था, उसके बाद देखा ना तो मुझे लग रहा था 3-4 ऐसे उतरे हुए तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बेलकोनी में आया. बेलकोनी में यहाँ

0: दो लड़के खड़े थे तो किसी को फोन पे बुला रहा था, नीचे आओ नीचे आओ, बहुत जोर जोर से। मैंने बोला था आप हमारे केयर टेकर के भाई है क्या, मैंने पूछा उसे, तो उनने नहीं ये कहा था तब तक। अच्छा तो अंदर क्या हो रहा है, मैंने चिल्ला के बोला था, तो उसने बोला था पता नहीं है। उसके बाद है ना पीछे से देखा था, ऊपर से तो पीछे देखेगा फेस भी नहीं देखेगा, नीचे से तीन चार लड़के जाते हुए मैंने देखा। उसके बाद मैं अंदर चले गया और ट्री मैंने चलो नॉर्मली धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मैंने इतना हद तक नहीं सोचा किसी का जान जाए।
1: Left a loss that words cannot be expressed. We also ask the authority to ensure a fair and impartial investigations and to hold everyone responsible, accountability under the law. We are not seeking revenge, we are seeking justice.
2: फेशियल अगर ऐसे नहीं होता तो होता भी नहीं हमारे साथ ये, पर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेसिज्म। प्लेफुल था, बहुत एनर्जेटिक था, फनी था, बट नो नथिंग विद फाइटिंग।
3: Everyone has been caught in the CCTV camera. What we want is the justice, and that justice should not be delayed, because justice delay is justice denied. We want them to, you know, under the fast track, they have to be given the strictest, you know, punishment, and we want it. We want justice, because this has been very frequent. The people of Northeast has been facing all these racism and, you know, crimes against us.
4: मेरे साथ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार उनसे बात करते हैं। सर कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए?
5: देखिए करीब कल 1:30 बजे के करीब हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें जो हमारे विक्टिम हैं श्री विक्रम सिंह जी जो मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया था। जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तब हमें पता चला कि 6 और 7 की रात के बिटवीन 11:30 to 12 कुछ लड़के इनकी गली में खड़े होकर शोर शराबा कर रहे थे। उसी के ऊपर जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो झगड़ा बढ़ा और मारपीट हुई, और उसी मारपीट में इनको कुछ चोटें आई। उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर करीब 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई।
4: सर कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, क्या प्रोफाइल है उनका?
5: अभी तक हम लोग इसमें 7 लोग अरेस्ट कर चुके हैं और एक माइनर अप्रेहेंड कर चुके हैं। वो सब लोग वहाँ पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट में या तो वर्कर थे या एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे।
6: Let's now also tell you about another important event that happened today, where the Prime Minister was in Vadodara in Gujarat this afternoon. And while he was going to address the student, on his way he made a Dhurandhar entry into the Namo for Viksit Bharat event in Gujarat's Vadodara. The Prime Minister launched a scathing attack on the opposition and the UPA government era as well. He targeted the previous UPA government over the delay in completing the dedicated freight corridor, saying that the project remained stuck in bureaucratic processes for years before his government accelerated its implementation. He also renewed his Naraz Fufa jibe on opposition and said that the opposition leaders cannot be happy with India's vikas and that they keep cribbing about everything. Here's those big attacks of the Prime Minister.
7: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है, यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई। और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था।
6: And with that, it's time for us to slip in over a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
8: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: experience in a student's only WhatsApp group following the Viva examinations that were held in the month of May. There were other students then who came forward with similar accounts. The university committee had then begun proceedings and students have been asked to record their statements. We earlier spoke to the AVBP General Secretary, listening to what he had to say on the matter. Now, Vikas Patel, ABVP Joint Secretary, is now joining me on the phone line. Mr. Patel, what do you make of this? Students protesting, and we are learning ABVP, your party, has only gone out and said that the professor has links with the Congress. That's why he's being shielded despite those sexual harassment complaints against him.
1: देखिए क्या है कि इस तरह की जो घटना है वो मई में आई थी और ये घटना सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसको सिटी प्लस जेएनएम बोला जाता है वहाँ घटना है और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वाइवा में ऐसा मतलब कि जो सोशल मीडिया से ऐसा खबर आ रहा है और कुछ छात्रों से बात हुई है और इसका कंप्लेंट जो हुआ था उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि वाइवा में ऐसे कुछ फेवर्स के लिए मतलब कि सेक्सुअल फेवर्स के लिए ऐसा बोला गया था और उसके अलावा कुछ ऐसे चैट्स भी हुए थे जिनका अभी एविडेंस तो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं और तो ऐसे छात्रों से संपर्क में भी है लेकिन कोई छात्र डर के मारे सामने नहीं आ रहा है. ऐसे कुछ कुल 11 छात्रों ने आईसी में कंप्लेन किया था और विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत जो बना है आईसी जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी हर इंस्टीट्यूट में होते हैं उन इंस्टीट्यूट को 90 दिनों के अंदर अपना जो इन्वेस्टिगेशन होता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट देना होता है और अगले 10 दिनों में देना होता है. अभी 4 महीने हो चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और प्रशासन भी
0: 4 महीने हो चुके हैं
1: जी. 4 महीने ये मई की घटना है और उसके बाद से ही अभी तक इस पर कोई प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है और जो आईसी में रिप्रेजेंटेटिव है वो लेफ्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए और ये पहली घटना नहीं हुई है. जेएनयू में इस तरह की घटनाएं होती रही है और जब भी इस तरह की घटना होती है तो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जो जेएनयू के लोग हैं आईसी के इससे पहले जीएसपीएस में जो लोग थे वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इस पे जजमेंट देते हैं और अपने कैडर्स के लोगों को बचाने का काम करते हैं चाहे वो फैकल्टी हो चाहे इनके कैडर के खुद के लोग हैं.
0: From the national capital, let's now tell you what's making headlines in the state of Tamil Nadu. Tamil Nadu's political battle has now spilled onto the floor of the assembly and this time it has turned extremely personal. Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, launched a blistering attack on the DMK, taking aim at its corruption record and challenging the party's carefully cultivated Mr. Clean image. But one moment in the speech has triggered a fresh political storm. The DMK claims that Vijay mocked the former Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin's physical injury and an injury that Stalin suffered after being assaulted in custody during the emergency period. DMK MP Kani Mohi has also accused the Chief Minister of touching lowest of lows with his comments on M.K. Stalin. Ally CPIM has also hit out at the Chief Minister. The left says political criticism is one thing, but ridiculing a personal injury is beyond the line. The Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay, had then gone on to clarify his gesture in the assembly by saying that the gesture he made yesterday was with the hand and jaw, was not intended to hurt anyone. Now, why did he have to come up with that clarification is a point of contention, but here are the reactions that we're tracking on the story.
2: நம்ம நண்பர்கள் எது பேசினாலும் நாங்க மிசாவை பார்த்தவங்க மிசாவை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்கும் மிசாவை கொண்டு வந்து விட்டா என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. ஐயா பெரியவர்களே எல்லாருக்கும் அந்த மிசாவை பத்தின ஹிஸ்டரிய பத்தி எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும்.
3: மிசா எமர்ஜென்சியை கொச்சப்படுத்துறாரு. நாடு முழுவதும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை நாடு முழுவதும் அதை எதிர்த்து ஜனநாயகத்திற்காக போராடி எத்தனை பேர் சிறைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை சேர்ந்த தோழர்கள் எத்தனை பேர் சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க இதில் வரலாறு தெரிய வேண்டும். கேள்வி சட்டமன்றத்தில் கேட்கப்பட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லணும். அவங்க ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்காங்க அதை புரிஞ்சுக்காம மற்றவங்க மேலே குற்றம் சொல்லுவது தான் வந்து சட்டமன்ற நடவடிக்கை அப்படின்னு அதை கேலி கூத்தாக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் டுடே The Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay Avargalude pechu vandu, it touched the lowest of the low.
4: பப்ளிக் டாக்குமெண்ட் அதெல்லாம் வந்து கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணதில் எங்கெங்கெல்லாம் ஆதாரம் கேட்காதுங்களோ அதில் விசாரணைக்கு எந்த விதத்திலும் விசாரணையை பற்றியோ நீதிமன்றத்தை பற்றி எதுவும் பேசல. எங்கெங்கெல்லாம் ஆதாரம் இருக்குதோ அது ஆதாரத்தை குறிப்பிட்டு பேசினார். சர்க்காரிய கமிஷனை பற்றி இந்த அவையிலே எல்லாமே இருக்குது இருக்கிறது தானே பேசினார். மிசா குறித்து நிறையா பேசியாச்சு மிசால யார் யார் வேணாலும் அந்த மிசா காலங்களில் திருட்டு வழக்கு, வழிப்பறி வழக்கு, பெண்கள் குறித்து வழக்கு கைது செய்யலாம். ஆனால் எல்லாமே மிசால கைது செய்தால் கன்சிடர்லாம் பண்ண முடியாது. மிசால வழிப்பறி வழக்கும் இருக்கும், கொலை வழக்கும் இருக்கும், திருட்டு வழக்கும் இருக்கும், இல்லை பெண்கள் குறித்து வழக்கும் இருக்கும். ஏன் 20 அம்ச திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ண திருமதி இந்திரா காந்தியார் மம்மையார் இந்திரா காந்தியாரை பற்றி 21 அம்சம் திட்டம்னு சொல்லி அவதூறாக பேசினவர் அப்போ இருந்த இப்போ இருக்க முன்னாள் முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள். 21வது அம்சம் திட்டம்னு அவதூறாக பேசி பல விஷயங்களை பேசின அடிப்படையில் தான் அப்போ கைது செய்யப்பட்டார்.
0: Moving on, BJP MP and actor Kangana Ranaut has now come out in defense of actor Trisha Krishnan amid back-to-back political attacks on her. Pointing to the controversy in Tamil Nadu, Kangana has asked, why is it that when a women relationship involves two people, the woman alone is dragged and targeted? She has also asked, and I quote her here, why is it only that women are targeted over relationships? Kangana also questioned how long will society continue with this double standard and whether we truly respect women while publicly tearing down their character.
5: ये हम सब जानते हैं, ये किसी भारत की ही तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सीमित है। चाहे वो महिला काम करने वाली हो, या वो सफल हो, या वो नेत्री हो, या वो पावर की पोजीशन पर हो, अथॉरिटी की पोजीशन पर हो, हमेशा उसको लेकर जो है, हमेशा उसके चरित्र को लेकर ही उसे जो है नीचे गिराया जा रहा है। और तमिलनाडु में भी आपने देखा हुआ है कि वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार, अभिनेत्री और जो भी उनके जो संबंध है, जिस तरह से भी, वो दोनों ही पक्ष के होते हैं, लेकिन गाली गलौज के लिए और चीरहरण के लिए हमेशा महिला को ही ढूंढा जाता है। तो इस तरह की जो है, ये जो कैरेक्टर लिंचिंग जो है, ये महिलाओं की कब रुकेगी? ये जो है कहीं ना कहीं हमें समाज के रूप में अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या हम वाकई में महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं।
0: Let's now take you to a story from the national capital where it's nothing short of a horror, a murder horror. The man that you will see on your screen in just some moments from now, his name is Chongtham Vikram Singh. He is a Manipuri musician. He was beaten to death in Delhi after objecting to loud music and drinking outside his home. And what started as a confrontation over the disturbance quickly escalated into a violent attack. There are CCTV visuals that show how the mob was chasing Vikram Singh upstairs, followed by the accused, then fleeing the spot after beating him to death. Vikram Singh later succumbed to his injuries. There are 7 people who have been held in the connection with his mob lynching. A neighboring dispute over loud music and drinking outside his home turned into a horrifying mob lynching. Meanwhile, the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has condemned the incident and has slammed the government over it. The deceased Vikram Singh's wife has requested space for the family to grieve in peace, hoping no one else goes through the same fate. Speaking on behalf of all Manipuris was the founder of Forum of Northeast Against Racism, Meena Lakshmi, who reiterates that any more such incident shall spark a conflict.
6: Because of altercation and because of requesting to make lower noise around this residential area, a man from Manipur, a renowned singer from the state of Manipur, was chased. He was killed, and certainly now the Delhi police have investigated and arrested at least 7 people. One minor has been apprehended. Joining with me is one of the eyewitnesses and also the neighbor of Vikram Singh. Ma'am, what happened on the intervening night of 6th and 7th?
7: रात को 12 बज के 2-3 मिनट में हुआ होगा। मैं खाना खा के सोने वाली थी, तो वहाँ पे ना एकदम औरतों का चिकने या मर्द का चिकने का बहुत भयंकर आवाज़ आया था, एकदम लड़ाई झगड़ा का, मारपीट का। तो उसके बाद है ना, मैंने ये तो बहुत अजीब सा माहौल था, तो मैं बाहर मतलब देखने के लिए कोशिश किया दौर से, हमारी जो दौर का कैमरा होता है ना उसी में, तो उसी में ना कुछ आदमी लोग का तो दिखाई दिया, फेस नहीं दिखाई दिया था। उसके बाद मैंने सूरज लॉक खोल के चेन तो लगाया हुआ था, उसके बाद देखा ना तो मुझे लग रहा था 3-4 ऐसे उतरे हुए, तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बेलकोनी में आया। बेलकोनी में यहाँ पर 2 लड़के खड़े थे, तो किसी को फ़ोन पर बुला रहा था, नीचे आओ नीचे आओ, बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैंने बोला था आप हमारे केयर टेकर के भाई है क्या, मैंने पूछा उसे, तो उन्हें नहीं ये कहा था तब तक। अच्छा, तो अंदर क्या हो रहा है, मैंने चिल्ला के बोला था, तो उसने बोला था पता नहीं है। उसके बाद है ना पीछे से देखा था, ऊपर से तो पीछे देखेगा, फेस भी नहीं देखेगा, नीचे से 3-4 लड़के जाते हुए मैंने देखा। उसके बाद मैं अंदर चले गए और मैंने चलो नॉर्मली धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मैंने इतना हद तक नहीं सोचा किसी का जान जाए।
8: His sudden death has left a loss that words cannot be expressed. We also ask the authority to ensure a fair and impartial investigations and to hold everyone responsible, accountability under the law. We are not seeking revenge. We are seeking justice.
9: अगर हमारा फेशियल अगर ऐसे नहीं होता तो होता भी नहीं हमारे साथ ये पर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेसिज्म प्लेफुल था बहुत एनर्जेटिक था फनी था बट नो नथिंग विथ फाइटिंग
10: Everyone has been caught in the CCTV camera. What we want is the justice, and that justice should not be delayed because justice delay is justice denied. We want them to, you know, under the fast track, they have to be given the strictest, you know, punishment, and we want it. We want justice because this has been very frequent. The people of North East has been facing all these racism and, you know, crimes against us.
11: मेरे साथ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार उनसे बात करते हैं सर कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं
12: देखिए करीब कल 1:30 बजे के करीब हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी लड़ाई झगड़े की जिसमें जो हमारे विक्टिम हैं श्री विक्रम सिंह जी जो मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं उनको अस्पताल ले जाया गया था जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तब हमें पता चला कि 6 और 7 की रात के बिटवीन 11:30 to 12 कुछ लड़के इनकी गली में खड़े होकर शोर शराबा कर रहे थे उसी के ऊपर जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो झगड़ा बढ़ा और मारपीट हुई और उसी मारपीट में इनको कुछ चोटें आई उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर करीब 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई
11: सर कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं क्या प्रोफाइल है उनका
12: अभी तक हम लोग इसमें 7 लोग अरेस्ट कर चुके हैं और एक माइनर अप्रिहेंड कर चुके हैं वो सब लोग वहाँ पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट में या तो वर्कर थे या एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे
0: Let's now also tell you about another important event that happened today where the Prime Minister was in Vadodara in Gujarat this afternoon. And while he was going to address the student on his way, he made a Dhurandhar entry into the Namo for Viksit Bharat event in Gujarat's Vadodara. The Prime Minister launched a scathing attack on the opposition and the UPA government era as well. He targeted the previous UPA government over the delay in completing the dedicated freight corridor, saying that the project remained stuck in bureaucratic processes for years before his government accelerated its implementation. He also renewed his Naraz Fufa jibe on opposition and said that the opposition leaders cannot be happy with India's vikas and that they keep cribbing about everything. Here's those big attacks of the Prime Minister.
13: Jhoot ki gunj se bharmane wale to har chauhraye par mil jayenge. Lekin Bharat ka naujawan sach ki hunkar se chalta hai. सच की हुंकार के साथ चलता है सच की हुंकार के लिए चलता है जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया 250 ट्रक अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा ट्रक कहाँ जाएंगे जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा अब फूफाजी को काम मिल गया पहले वाली सरकार 2000 तक रही आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए याद रखिए 7-8 वर्ष में एक किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था।
0: And with that, it's time for us to slip in over a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
14: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: political attacks on her. Pointing to the controversy in Tamil Nadu, Kangana has asked, why is it that when a women relationship involves two people, the woman alone is dragged and targeted? She has also asked, and I quote her here, why is it only that women are targeted over relationships? Kangana also questioned how long will society continue with this double standard and whether we truly respect women while publicly tearing down their character.
1: ये हमें ये हम सब जानते हैं ये किसी भारत की ही तक सीमित नहीं है पूरे विश्व में सीमित है चाहे वो महिला काम करने वाली हो या वो सफल हो या वो नेत्री हो या वो पावर की पोजीशन पर हो अथॉरिटी की पोजीशन पर हो हमेशा उसको लेकर जो है हमेशा उसके चरित्र को लेकर ही उसे जो है नीचे गिराया जा रहा है और तमिलनाडु में भी आपने देखा हुआ है कि वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार अभिनेत्री और जो भी उनके जो संबंध है जिस तरह से भी वो दोनों ही पक्ष के होते हैं लेकिन गाली गलौज के लिए और चीरहरण के लिए हमेशा महिला को ही ढूंढा जाता है तो इस तरह की जो है ये जो कैरेक्टर लिंचिंग जो है ये महिलाओं की कब रुकेगी ये जो है कहीं ना कहीं हमें समाज के रूप में अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या हम वाकई में महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं
0: Let's now take you to a story from the national capital where it's nothing short of a horror, a murder horror. The man that you will see on your screen in just some moments from now, his name is Chongtham Vikram Singh. He is a Manipuri musician. He was beaten to death in Delhi after objecting to loud music and drinking outside his home. And what started as a confrontation over the disturbance quickly escalated into a violent attack. There are CCTV visuals that show how the mob was chasing Vikram Singh upstairs, followed by the accused, then fleeing the spot after beating him to death. Vikram Singh later succumbed to his injuries. There are seven people who have been held in the connection with his mob lynching. A neighboring dispute over loud music and drinking outside his home turned into a horrifying mob lynching. Meanwhile, the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has condemned the incident and has slammed the government over it. The deceased Vikram Singh's wife has requested space for the family to grieve in peace, hoping no one else goes through the same fate. Speaking on behalf of all Manipuris was the founder of Forum of Northeast Against Racism, Meena Lakshmi, who reiterates that any more such incident shall spark a conflict.
2: Because of altercation and because of requesting to make lower noise around this residential area, a man from Manipur, a renowned singer from the state of Manipur, was chased. He was killed, and certainly now the Delhi police have investigated and arrested at least seven people. One minor has been apprehended. Joining with me is one of the eyewitnesses and also the neighbor of Vikram Singh. Ma'am, what happened on the intervening night of 6th and 7th?
3: रात को 12 बज के दो तीन मिनट में हुआ होगा मैं खाना खा के सोने वाली थी तो वहाँ पे ना एकदम औरतों का चिकने या मर्द का चिकने का बहुत भयंकर आवाज़ आया था एकदम लड़ाई झगड़ा का मारपीट का तो उसके बाद है ना मैंने ये तो बहुत अजीब सा माहौल था तो मैं बाहर मतलब देखने के लिए कोशिश किया दौर से हमारी जो दौर का कैमरा होता है ना उसी में तो उसी में ना कुछ आदमी लोग का तो दिखाई दिया फेस नहीं दिखाई दिया था उसके बाद मैंने सूरज लॉक खोल के चेन तो लगाया हुआ था उसके बाद देखा ना तो मुझे लग रहा था तीन चार ऐसे उतरे हुए तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा तो मैंने दरवाज़ा खोल के बेलकोनी में आया बेलकोनी में यहाँ पर दो लड़के खड़े थे तो किसी को फ़ोन पर बुला रहा था नीचे आओ नीचे आओ बहुत ज़ोर ज़ोर से मैंने बोला था आप हमारे केयर टेकर के भाई है क्या मैंने पूछा उसे तो उन्हें नहीं ये कहा था तब तक अच्छा तो अंदर क्या हो रहा है मैंने चिल्ला के बोला था तो उसने बोला था पता नहीं है उसके बाद है ना पीछे से देखा था ऊपर से तो पीछे देखेगा फेस भी नहीं देखेगा नीचे से तीन चार लड़के जाते हुए मैंने देखा उसके बाद मैं अंदर चले गया और थ्री मैंने चलो नॉर्मली धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हुआ होगा मैंने इतना हद तक नहीं सोचा किसी का जान जाए
4: His sudden death has left a loss that words cannot be expressed. We also ask the authority to ensure a fair and impartial investigations and to hold everyone responsible accountability under the law. We are not seeking revenge, we are seeking justice.
5: अगर हमारा फेशियल अगर ऐसे नहीं होता तो होता भी नहीं हमारे साथ ये पर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेसिज्म प्लेफुल था बहुत एनर्जेटिक था फनी था but no, nothing with fighting.
6: Everyone has been caught in the CCTV camera. What we want is the justice, and that justice should not be delayed, because justice delay is justice denied. We want them to, you know, under the fast track, they have to be given the strictest, you know, punishment, and we want it. We want justice, because this has been very frequent. The people of Northeast has been facing all these racism and, you know, crimes against us.
7: मेरे साथ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार उनसे बात करते हैं। सर, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए?
8: देखिए, करीब कल 1:30 बजे के करीब हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें जो हमारे विक्टिम हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया था। जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तब हमें पता चला कि 6 और 7 की रात के बिटवीन 11:30 to 12 कुछ लड़के इनकी गली में खड़े होकर शोर शराबा कर रहे थे। उसी के ऊपर जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो झगड़ा बढ़ा और मारपीट हुई, और उसी मारपीट में इनको कुछ चोटें आई। उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर करीब 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई।
7: सर, कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, क्या प्रोफाइल है उनका?
8: अभी तक हम लोग इसमें 7 लोग अरेस्ट कर चुके हैं और 1 माइनर अप्रेहेंड कर चुके हैं। वो सब लोग वहाँ पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट में या तो वर्कर थे या एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे।
0: Let's now also tell you about another important event that happened today, where the Prime Minister was in Vadodara in Gujarat this afternoon. And while he was going to address the student, on his way he made a Dhurandhar entry into the Namo for Viksit Bharat event in Gujarat's Vadodara. The Prime Minister launched a scathing attack on the opposition and the UPA government era as well. He targeted the previous UPA government over the delay in completing the dedicated freight corridor, saying that the project remained stuck in bureaucratic processes for years before his government accelerated its implementation. He also renewed his Naraz Fufa jibe on opposition and said that the opposition leaders cannot be happy with India's vikas and that they keep cribbing about everything. Here's those big attacks of the Prime Minister.
9: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है, यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई, और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था।
0: And with that, it's time for us to slip in over a quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

बहुत मैं इसके लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहले दिन से एनडीटीवी इस रास्ते पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा

0: सीमित नहीं है, पूरे विश्व में सीमित है। चाहे वो महिला काम करने वाली हो, या वो सफल हो, या वो नेत्री हो, या वो पावर की पोजीशन पर हो, अथॉरिटी की पोजीशन पर हो, हमेशा उसको लेकर जो है, हमेशा उसके चरित्र को लेकर ही उसे जो है नीचे गिराया जा रहा है। और तमिलनाडु में भी आपने देखा हुआ है कि वहाँ पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार, अभिनेत्री और जो भी उनके जो संबंध है, जिस तरह से भी, वो दोनों ही पक्ष के होते हैं, लेकिन गाली गलौज के लिए और चीरहरण के लिए हमेशा महिला को ही ढूंढा जाता है। तो इस तरह की जो है, ये जो कैरेक्टर लिंचिंग जो है, ये महिलाओं की कब रुकेगी? ये जो है कहीं ना कहीं हमें समाज के रूप में अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या हम वाकई में महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं।
1: Let's now take you to a story from the national capital where it's nothing short of a horror, a murder horror. The man that you will see on your screen in just some moments from now, his name is Chongtham Vikram Singh. He is a Manipuri musician. He was beaten to death in Delhi after objecting to loud music and drinking outside his home. And what started as a confrontation over the disturbance quickly escalated into a violent attack. There are CCTV visuals that show how the mob was chasing Vikram Singh upstairs, followed by the accused, then fleeing the spot after beating him to death. Vikram Singh later succumbed to his injuries. There are 7 people who have been held in the connection with his mob lynching. A neighboring dispute over loud music and drinking outside his home turned into a horrifying mob lynching. Meanwhile, the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has condemned the incident and has slammed the government over it. The deceased Vikram Singh's wife has requested space for the family to grieve in peace, hoping no one else goes through the same fate. Speaking on behalf of all Manipuris was the founder of Forum of Northeast Against Racism, Meena Lakshmi, who reiterates that any more such incident shall spark a conflict.
2: Because of altercation and because of requesting to make lower noise around this residential area, a man from Manipur, a renowned singer from the state of Manipur, was chased. He was killed, and certainly now the Delhi police have investigated and arrested at least 7 people. One minor has been apprehended. Joining with me is one of the eyewitnesses and also the neighbor of Vikram Singh. Ma'am, what happened on the intervening night of 6th and 7th?
3: रात को 12 बज के 2-3 मिनट में हुआ होगा। मैं खाना खा के सोने वाली थी, तो वहाँ पे ना एकदम औरतों का चिकने या मर्द का चिकने का बहुत भयंकर आवाज़ आया था, एकदम लड़ाई झगड़ा का, मारपीट का। तो उसके बाद है ना, मैंने ये तो बहुत अजीब सा माहौल था, तो मैं बाहर मतलब देखने के लिए कोशिश किया दौर से, हमारी जो दौर का कैमरा होता है ना उसी में, तो उसी में ना कुछ आदमी लोग का तो दिखाई दिया, फेस नहीं दिखाई दिया था। उसके बाद मैंने सूरज लॉक खोल के चेन तो लगाया हुआ था, उसके बाद देखा ना तो मुझे लग रहा था 3-4 ऐसे उतरे हुए, तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बेलकोनी में आया। बेलकोनी में यहाँ पर 2 लड़के खड़े थे, तो किसी को फ़ोन पर बुला रहा था, नीचे आओ नीचे आओ, बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैंने बोला था आप हमारे केयर टेकर के भाई है क्या, मैंने पूछा उसे, तो उन्हें नहीं ये कहा था तब तक। अच्छा, तो अंदर क्या हो रहा है, मैंने चिल्ला के बोला था, तो उसने बोला था पता नहीं है। उसके बाद है ना पीछे से देखा था, ऊपर से तो पीछे देखेगा फेस भी नहीं देखेगा, नीचे से 3-4 लड़के जाते हुए मैंने देखा। उसके बाद मैं अंदर चले गया और मैंने चलो नॉर्मली धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मैंने इतना हद तक नहीं सोचा किसी का जान जाए।
4: His sudden death has left a loss that words cannot be expressed. We also ask the authority to ensure a fair and impartial investigations and to hold everyone responsible, accountability under the law. We are not seeking revenge, we are seeking justice.
5: अगर हमारा फेशियल अगर ऐसे नहीं होता तो होता भी नहीं हमारे साथ ये, पर आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेसिज्म। प्लेफुल था, बहुत एनर्जेटिक था, फनी था, बट नो नथिंग विथ फाइटिंग।
6: Everyone has been caught in the CCTV camera. What we want is the justice, and that justice should not be delayed, because justice delay is justice denied. We want them to, you know, under the fast track, they have to be given the strictest, you know, punishment, and yes. We want justice, because this has been very frequent. The people of Northeast has been facing all this racism and, you know, crimes against us.
7: मेरे साथ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं?
8: देखिए, करीब कल 1:30 बजे के करीब हमें एक PCR कॉल मिली थी लड़ाई झगड़े की, जिसमें जो हमारे विक्टिम हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया था। जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तब हमें पता चला कि 6 और 7 की रात के बिटवीन 11:30 to 12 कुछ लड़के इनकी गली में खड़े होकर शोर शराबा कर रहे थे। उसी के ऊपर जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो झगड़ा बढ़ा और मारपीट हुई, और उसी मारपीट में इनको कुछ चोटें आई। उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर करीब 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई।
7: सर, कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, क्या प्रोफाइल है उनका?
8: अभी तक हम लोग इसमें 7 लोग अरेस्ट कर चुके हैं और 1 माइनर अप्रेहेंड कर चुके हैं। वो सब लोग वहाँ पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट में या तो वर्कर थे या एज ए डिलीवरी बॉय काम करते थे।
1: Let's now also tell you about another important event that happened today, where the Prime Minister was in Vadodara in Gujarat this afternoon. And while he was going to address the student, on his way he made a Dhurandhar entry into the Namo for Viksit Bharat event in Gujarat's Vadodara. The Prime Minister launched a scathing attack on the opposition and the UPA government era as well. He targeted the previous UPA government over the delay in completing the dedicated freight corridor, saying that the project remained stuck in bureaucratic processes for years before his government accelerated its implementation. He also renewed his Naraz Fufa jibe on opposition and said that the opposition leaders cannot be happy with India's vikas and that they keep cribbing about everything. Here's those big attacks of the Prime Minister.
9: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है, सच की हुंकार के साथ चलता है, सच की हुंकार के लिए चलता है। JNPT पोर्ट से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है, यानी डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगाकर मालगाड़ी को चलाया गया। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। 250 ट्रक। अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया। पहले वाली सरकार 2000 तक रही, आपने मुझे भेजा और उनकी विदाई हुई, और सच्चाई ये थी कि 7-8 वर्ष में, जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था।
1: एंड विद दैट इट्स टाइम फॉर अस टू स्लिप इन अ वेरी क्विक ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, न्यूज एंड अपडेट कंटिन्यू ऑन द अदर साइड।
10: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, the fury of Operation Sindhu,
11: so many attacks,
10: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
11: It's incredible.
10: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
11: Welcome to Left, Right, and Center.
10: Hard facts.
11: War struck country.
10: Hard questions.
11: In the Ukraine.
10: 30 years of trust.
12: In the Kargil area.
11: North Ukraine.
12: In France. In Italy.
11: At Srinagar.
12: Hi, Mr. France.
11: Vishnu Shom for NDTV.
10: Vishnu Shom. Only on NDTV.
13: Launch control 0 to 100.
14: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.